0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: जेंडर स्टीरियोटाइप्स मेरे लिए इतना बड़ा डील ब्रेकर है. सो आई मेट दिस गाय ऑन अ डेटिंग ऐप और हमारी लाइक काफ़ी सही कॉन्वर्सेशन हो रही थी, सब कुछ ऑसम था. एंड देन उसने तीसरी डेट पर मुझसे ये पूछा कि अच्छा तो क्या क्या खाना बना लेती है तू. आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड हाँ. ही सेड हाँ क्या क्या खाना बना लेती है तू. आई वॉज लाइक और कितने करोड़ कमा लेता है तू. तो ही सेड कि इन दोनों क्वेश्चन में क्या कॉमन है. आई वॉज लाइक जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कॉमन है. तू मुझसे ये पूछ रहा है कि मुझे क्या खाने खाने बनानी आती है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ एंड यू आर प्रिज्यूमिंग कि किचन में मेरा हाथ तो काफ़ी लाइक स्किल्ड होगा. तो मैं भी प्रिज्यूम कर रही हूँ क्योंकि तू लड़का है एंड यू आर ऑफ अ सर्टेन एज. इतने करोड़ तो तूने कमा ही लिए होंगे. तो ही सेड कि काफ़ी ऑफेंसिव क्वेश्चन पूछ रही है तू मुझसे. सो आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड कि तू भी मुझसे काफ़ी ऑफेंसिव क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल डज नॉट मीन कि पिंक मेरा फेवरेट कलर है और खाना बनाना मेरा फेवरेट पास्ट टाइम है. और उसके बाद ऑब्वियो आई डिड नॉट मीट दैट गाय अगेन. बट मेरा पॉइंट ये कि जब आप किसी लड़की या लड़के को मिलते हो ना, ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स लेके मत जाया करो कि बंदे के तो मसल्स होंगे ही, बंदा तो जिम जाता ही होगा, बंदी के बाल लंबे ही होंगे. जेंडर स्टीरियोटाइप्स

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Mirci, burga. Hello.
2: Hello.
1: Kaun?
2: Hello, Vipin.
1: कौन बोल रहा है?
2: इस्ता। मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
1: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
2: आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
1: भाई तू इतनी धीरे के बोल रहा है?
2: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ, और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से, पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पावड़ के फेंक देते हैं। 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे हो, जरा सा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है। मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है। आप बताओ कब किया था?
1: पहले किया था।
2: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
1: ऑनलाइन की थी।
2: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
1: जाना जरूरी है?
2: कहाँ जा रहे हो?
1: नहीं दुबई।
2: अच्छा तो दुबई जाना है?
1: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
2: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
1: हाँ ठीक है।
2: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
1: आपने सही कह रहे
2: हैं। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
1: बताओ।
2: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
1: मैं तो पागल है क्या?
2: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ।
1: करवा देना भी है
2: आपसे। मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे।
1: सॉरी।
2: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
1: ओके।
2: I love you too.
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot, it's hot.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: The truth is, लोगों से एक girlfriend संभाली नहीं जाती. आपके पास चार चार girlfriends हैं in four different cities. एक को पता चल गया ना दूसरे के बारे में, तो अब आएंगे असली मजे.
3: The secret box.
2: Did you guess it? It is time for the secret box. जो भी आपका confession, hit me up on Insta या FB. Let's get talking. मेरा नाम है Mirchi Roshi. नाम की spelling है R-O-C-H-I-E. और मेरे साथ line पर है मेरे mystery caller. Hello, naughty boy.
4: Hello, Roshi.
2: Oh God, you sound hot.
4: आप
2: या बोल भी रही. या थैंक यू सो मच. सो हॉटी मिस्ट्री कॉलर, मुझे ये बताओ कि आपकी जिंदगी में एक गर्लफ्रेंड है या तीन चार?
4: एक एक.
2: नाइस. फॉर अ गाय हु साउंड्स दिस हॉट, आई वुडंट बी सरप्राइज अगर आपकी तीन चार गर्लफ्रेंड्स हो. लेकिन अगर वो आपकी कन्फेशन नहीं है तो क्या है आपकी कन्फेशन?
4: माय कन्फेशन इज कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड को मिलाने लेके जा रहा था मेरे घर पे. सो मम्मी थी नहीं घर पे, माय फादर वाज देयर. सो हम घर पे गए, मैं सारी बातें कर रहे थे. पापा पूछ रहे थे क्या करते हो, क्या कैसे करते हो, क्या सारी चीजें, यही सारी चीजें जनरली जो होती है डिस्कशन. एंड खाए जा रहे थे लगातार लड्डू, खाना, सैंडविच, मतलब लगातार खाए जा रहे थे. एंड ऑल ऑफ अ सडन what he did was he farted. My father farted.
2: और क्या उन्होंने लाइक लाउड फार्ट किया कि सबको सुनाई दे जाए आपकी?
4: यस, लाउड फार्ट किया. एंड यू विल नॉट बिलीव व्हाट ही डिड.
2: व्हाट?
4: उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा आपने क्यों फार्ट किया?
2: व्हाट, आर यू सीरियस?
4: डोंट ट्रस्ट मी, यू ट्रस्ट मी प्लीज. एंड आई, इट वाज सो एंबैरेसिंग यार. मैंने कहा यार हाउ कैन माय फादर डू दिस टू मी.
2: ओह माय गॉड, तो आपके पापा आपकी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना चाह रहे थे तो उन्होंने अपना लाइक फार्ट का ब्लेम आपके ऊपर लगा दिया.
4: एंड दैट वाज अ एंबैरेसिंग सिचुएशन फॉर मी टू हैंडल.
2: ओह माय गॉड, तो फिर आपने क्या किया? आप तो ये भी नहीं कह सकते होगे कि यार नहीं डैड,
4: मैं कुछ नहीं कह सकता था, मैं चुप रहा.
2: डूर, दिस इज कॉल्ड अ सीरियस सीरियल कन्फेशन. आपको तो रोशिफिकेशन की बहुत जरूरत है यार.
4: यस रोशी,
2: एक गहरी सांस लो हॉटी.
0: You've been roshified.
2: अगली बार से ना जब भी आप अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पेरेंट्स से मिलाने ले जाओ या उनके साथ डिनर या लंच कराने ले जाओ, जस्ट मेक श्योर कि आपकी मम्मी साथ में हो, तब आपके पापा ऐसे नॉटी काम नहीं करेंगे.
4: हाँ, ये आइडिया अच्छा है रोशी,
2: है ना? इसे पक्का ट्राई करके देखना. और अगर आपकी जिंदगी में फिर से ऐसा कुछ होना, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सेंड मी योर नंबर. और आप, आपकी भी जिंदगी में अगर ऐसी कोई कन्फेशन है, व्हाई डोंट यू हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है R-O-C-H-I-E. एंड वी विल गेट टॉकिंग बेबी, सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू. लेकिन कहीं मत जाना, जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

मेरा चले तो ले ले पूरा दिन, हो तैयार तो घंटे न गिन, मैं हूँ यही एच सर्विस, टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट, हाथ मेरा थाम, लेट मी मेक यू स्माइल, आई लाइक योर स्वैग, यू लाइक माय स्टाइल, देती मुझे विंडो सीट खुद लेती आ, जब भी होती लो तो मेरा नंबर करे डाल, मैं हूँ तेरे साथ साथ तू है मेरे संग संग, तेरे साथ टाइम की खबर न लगे, किसी भी चीज में कसर न लगे, मांगू दुआ यही नजर न लगे, बेबी ऐसे है मत हमें क्या मत, तू मुझको मिली है, ये है मेरी किस्मत।

0: खुशी बाबा की।
1: काम डाउन माय भक्तजनों, अगर आप और आपके पार्टनर के बीच में फ्रेश झगड़ा हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली आप दोनों सेम ऑफिस में काम करते हो, सेम घर में रहते हो और व्हाटएवर द सीन इज, या इवन आपका झगड़ा फोन पर हुआ है, अपने जल्दी से मंदिर में जाओ, वहां से घंटी उठाओ, या अगर आपके पास एक जनरल बेल इन लाइफ है उसे अपने कमरे में जोर जोर से चारों कोनों में बजा लो। अकॉर्डिंग टू साउंड थेरेपी, जैसे ही आप इस बेल की साउंड इंट्रोड्यूस करोगे इनटू द रूम, जो स्टैग्नेंट हैवी क्वारलसम एनर्जी है, वो सारी एनर्जी विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स डिसिपेट हो जाती है, विच बेसिकली मीन्स आपका दिमाग शांत हो जाएगा, आपकी जो इंटेंस डेंस एनर्जी है वो शांत हो जाएगी, यू विल बी इन अ बेटर फ्रेम ऑफ माइंड टू डिसाइड कि आपको ये झगड़ा आगे बढ़ाना है या ये झगड़ा काट देना है, जैसे एक बीटी को काटते हैं बाय वॉचिंग अ गुड फिल्म। ऑन दैट नोट, अगर आपको ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत है, Why don't you hit me up Insta पर या FB पर, I'll be happy to help you. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So go ahead darling, do what you need to do, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: Rishi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: रिलेशनशिप में कितनी भी मोहब्बत हो रोसी, लेकिन अगर बेड्स अलग अलग हो तो रिलेशनशिप बहुत दूर तक चलता है। ये मेरा भाई मुझे ज्ञान दे रहा था हमारे एक रिलेटिव की एक्टिंग करते हुए, बिकॉज मेरा भाई हैज बीन सक्सेसफुली टचवुड इन अ लॉन्ग टर्म 4 ईयर लॉन्ग रिलेशनशिप, एंड ही वॉज लाइक यार रोशी हमारे रिलेशनशिप के लंबे चलने का राज ही है कि जब भी हम हॉलीडे पर इकट्ठे जाते हैं वी आस्क फॉर ट्विन बेड्स, एंड आई वॉज लाइक बट स्नगल्स और कडल्स वो सब जब तुम जाग रहे होते हो बढ़िया मस्त लगता है, उसके बाद जब सोने वाले होते हो ना तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास अपना कंबल हो, तुम गैस पास करना चाहते हो, डकार मारना चाहते हो, कंबल अपने पैरों के नीचे दबा कर सोना चाहते हो, इट डजंट रियली मैटर बिकॉज यू आर नॉट अपसेटिंग योर पार्टनर, सो योर पार्टनर एंड्स अप स्लीपिंग आराम से एंड वेक्स अप सेइंग गुजिगू बेबी डॉल। आई एम नॉट श्योर आई लाइक दिस थ्योरी इंटायरली बिकॉज मुझे रात को स्नगल्स बहुत पसंद है, ऑल्दो इट्स बीन अ रियली लॉन्ग टाइम सिंस दैट हैपेंड, लेकिन आपका क्या विचार है इसके बारे में, ट्विन बेड्स या वन जायंट किंग बेड? जो भी आपका आंसर है हिट मी विद इट ऑन इंस्टा या FB, लेट्स गेट टॉकिंग। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड व्हाइल यू आर एट इट आप लास्ट कब किसी रिलेशनशिप में थे ये भी बता देना, एंड व्हाइल यू डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना, सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La fiesta la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Anji.
3: Vivek ji.
2: Anji, bataiye.
3: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं।
2: या ऑफ कोर्स।
3: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़, ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
2: ठीक ही कह रहे हो।
3: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
2: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
3: अच्छा,
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो, बट मैं ध्यान रखूंगा,
3: थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
2: हाँ हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
3: क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
2: अरे कुछ नहीं यार।
3: नहीं, फिर भी क्या मतलब, काफी चीखी होगी आवाजें, क्या हुआ, क्या था?
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की।
3: अच्छा अच्छा,
2: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
3: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
2: हाँ, अभी इन्होंने चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत।
3: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
2: मजे आ रहे
3: हैं, बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
2: अरे तो मजा आ रहा है, यहाँ तू मजे ले रहा
4: फोन करके। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ये पगला
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: गाना चला दो, गाना चला दो।
1: अरे आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, गाना बजा दूं।

बॉलीवुड में कूट कूट के रोमांस भरा हुआ है, आई जस्ट कांट गेट ओवर इट। कवि की कल्पना तो देखिए, इसे गौर से सुनिएगा। इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट रोमांटिक थिंग यू हर्ड ऑल डे। सोनी दे नखरे सोने लग दे, सोनी दे नखरे सोने लग दे, कहंदी पॉप अप द जैम, कहंदी ये ओ जाने जाना, कहंदी पॉप अप द जैम। कैन यू इमेजिन दैट। मैं ये गाना पता नहीं क्यों रिविजिट करी थी, एंड आई रियलाइज की यार मेरा फोन भी गिर गया इसके बारे में सोच सोच के, किस तरह का गाना है। इमेजिन इफ सम गाय लुक्ड एट मी एंड सैंग दिस सॉन्ग, लाइक हम एक सीरियस कॉन्वर्सेशन करें, आई एम इन टू द गाय, देन ही लुक्स एट मी एंड सेज ओके अंदी पॉप अप द जैम, आई डू लाइक बोरा दरवाज़ा निकल यहाँ से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है दैट यू हैव कम अक्रॉस सम रियली रिटार्डेड लिरिक्स एंड यू आर लाइक, बुरे भी नहीं है, मैं गा ही तो रही हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है? अगर हाँ, देन आई डू वॉन्ट टू नो अबाउट योर रियली टेरेबल टेस्ट इन म्यूज़िक एंड डज इट एक्सटेंड टू योर पार्टनर्स इज वेल। आपके पार्टनर्स भी आपके गाने के टेस्ट की तरह ख़राब हैं, हाँ या ना? बताने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RoCHIE। सो गो अहेड, जानू मानू, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

माइंड इट, डोंट एंग्री मी, माइंड इट। अरे मेरे जैसे डांस किसको आता है, कोई योगराज को मैं ही सिखा दे।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, हीलियम है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सब फालतू इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों याद है? क्योंकि मैंने स्कूल में साइंस भी नहीं ली थी. एंड नाउ आई नो कि मुझे ये सब क्यों पता है. क्योंकि एक नई रिसर्च के हिसाब से फॉलिंग इन लव इम्प्रूव्स योर मेमोरी. एंड गिवन हाउ मेनी टाइम्स आई हैव फॉलन इन लव, मेरी मेमोरी एक एलिफेंट से भी ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए, विच इन फैक्ट इज अ मिथ. एलिफेंट्स की मेमोरी हमसे कोई बेटर नहीं होती है. ये सब क्या सिखाते पढ़ाते रहते हैं हमें? इस सब से तो बेटर है फॉल इन लव, लर्न इन लाइफ, राइज इन लाइफ. अगर ऐसे ही टिप्स एंड टिक्स एंड फालतू के फैक्ट्स चाहिए आपको, व्हाई डोंट यू हिट मी अप? हम दोस्ती करते हैं और उसके बाद रोज आई विल हिट यू विद Absolutely useless facts like this, that falling in love improves your memory. Mera naam hai Mirchi Roshi. I'm the girl in love with love, obvio, which is why I'm in love so often. Hit me up Insta ya FB par. Let's do friendship. And while you do that, kahi mat jana jana, kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte rao Mirchi, it's hot.
0: Oh God, one more remix.

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La virgua, la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो
4: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
3: नहीं, कौन बात कर रहा है?
4: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
3: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
4: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
3: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है, कौन?
4: ओ मेरी बात सुन।
3: कौन बात कौन कर रहा है?
4: ओ महेश।
3: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
4: तो दे, जब जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
3: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
4: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
3: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
4: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
3: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
4: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा?
3: आज मैं फिर वही बात को लेकर आ गया?
4: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
3: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
4: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। सुनो, मैंने तुझसे
3: वाली बातें कर रहा क्या?
4: मैं कोई पागल वाली बात नहीं कर रही, और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
3: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
4: शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
3: महेश का नंबर ही नहीं।

0: रॉन्ग ले रहा हूँ,
1: नहीं रॉन्ग नंबर ले तो उससे तुझसे बात नहीं, राइट नंबर ले, राइट नंबर ले ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
0: अरे रॉन्ग नंबर,
1: अरे यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे, चल ठीक है निकल तू
0: यार।
2: रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: The truth is, लोगों से एक गर्लफ्रेंड संभाली नहीं जाती. आपके पास चार चार गर्लफ्रेंड्स हैं इन फोर डिफरेंट सिटीज. एक को पता चल गया ना दूसरे के बारे में, तो अब आएंगे असली मजे. Did you guess it? It is time for the secret box. Jo bhi hai aapka confession, hit me up on Insta ya FB. Let's get talking. Mera naam hai Mirchi Roshi. Naam ki spelling hai R-O-C-H-I-E. Aur mere saath line par hai mere mystery caller. Hello, naughty boy.
3: Hello, Roshi.
2: Oh God, you sound hot.
3: Yeah. Aap,
2: yeah, bol bhi raha. Yeah, thank you so much. Yeah. So, haughty mystery caller, mujhe ye batao ki aapki zindagi mein ek girlfriend hai ya teen char?
3: एक, एक, एक.
2: Nice. For a guy who sounds this hot, I wouldn't be surprised अगर आपकी तीन चार girlfriends हो. लेकिन अगर वो आपकी confession नहीं है, तो क्या है आपकी confession?
3: My confession is कि मैं मेरी girlfriend को मिलाने लेके जा रहा था मेरे घर पे. So, मम्मी थी नहीं घर पे. My father was there. So, हम घर पे गए. मैं सारी बातें कर रहे थे. पापा पूछ रहे थे क्या करते हो, क्या कैसे करते हो, क्या सारी चीजें, यही सारी चीजें जनरली जो होती है डिस्कशन. एंड खाए जा रहे थे लगातार लड्डू, खाना, सैंडविच, मतलब लगातार खाए जा रहे थे. एंड ऑल ऑफ अ सडन

0: goes, he farted. My father farted.
1: और क्या उन्होंने लाइक लाउड फार्ट किया कि सबको सुनाई दे जाए आपकी
0: yes, लाउड फार्ट किया एंड यू विल नॉट बिलीव व्हाट इट इज
1: व्हाट
0: उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा आपने क्यों फार्ट किया
1: व्हाट आर यू सीरियस
0: डोंट ट्रस्ट मी यू ट्रस्ट मी प्लीज एंड आई इट वाज सो एंबैरेसिंग यार मैंने कहा यार हाउ कैन माय फादर डू दिस टू मी
1: ओह माय गॉड तो आपके पापा आपकी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना चाह रहे थे तो उन्होंने अपना लाइक फार्ट का ब्लेम आपके ऊपर लगा दिया
0: And that was an embarrassing situation for me to handle.
1: Oh my God.
2: Teri mummy ki jai.

देख के तुझको आए पसीना, शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: चुप हो ए बादशाह।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
3: शशि वो मैनहट्टन है।
2: मैन हैटन
4: मैन आज मी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
3: टैन मतलब वो धूप की छाप।

कई बार जब मैं आपसे बात करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक डायरी एंट्री कर रही हूँ, क्योंकि इट फील्स लाइक आई एम ऑलमोस्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू. और आज ना एक समथिंग वेरी स्पेशल हैपेंड टू मी व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू, बिकॉज शायद आपको भी ऐसा ही लगता होगा. प्यार तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमोशन है. अगर आपकी जिंदगी में प्यार है, देन ऑनेस्टली एवरीथिंग इज सॉर्टेड एज फार एज आई एम कंसर्न्ड. लेकिन उससे एक थोड़ा सा छोटा इमोशन है, इट्स नॉट एन इमोशन, इट्स एक्चुअली अ थिंग विच इज रिस्पेक्ट. जब आपकी जिंदगी में कोई आपको रिस्पेक्ट करता है, स्पेशली इन अ वेरी क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप, तब उस रिलेशनशिप के मायने कितने गहरे हो जाते हैं ना. आई नोटिस टुडे, हमारे ऑफिस में एक कॉलीग है, ही एंड आई हैव नोन ईच अदर फॉर ऑलमोस्ट नाउ 6-7 साल हो गए हमें. और आज हम एक कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, और भी लोग थे उस कॉन्वर्सेशन में, बट वेन ही वॉज टॉकिंग टू मी आई रियलाइज की एज क्रिएटिव टैलेंट, और क्योंकि वो खुद बहुत टैलेंटेड इंसान है, ही काइंड ऑफ offered a lot of respect to me in that conversation. And that's when I realized ki kahin na kahin, when in that conversation, he was actually...

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go!
3: आपने एक रील स्किप की, एक नया गाना रिलीज हो गया, एक ट्रेलर आ गया, फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, किसी ने कुछ पोस्ट किया और इसी बीच शायद एक खूबसूरत गाना आपके पास से निकल गया बिना आपके नोटिस किए। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां कंटेंट की कमी नहीं है, अटेंशन की कमी है, और शायद इसलिए आज सबसे मुश्किल काम अच्छा गाना बनाना नहीं, नोटिस किया जाना है। आज मैं बात करने वाला हूं उन गानों की जो भीड़ में अपनी जगह बना रहे हैं, उन सिंगर्स की जिनकी आवाजें आज भी गोल्ड हैं लेकिन माइक्रोफोन्स कहीं और ही लगे हुए हैं, उन सुपरस्टार्स की जो गायब हैं और उन आर्टिस्ट की जो एल्गोरिथम को हराकर सीधा आपकी प्लेलिस्ट तक पहुंच गए हैं। हाय, मैं हूं सुरेन और इस एपिसोड में हम नॉइज नहीं म्यूजिक सुनेंगे। दिस इज इंडियाज मोस्ट डिफिनेटिव

What a beautiful song, man. Jagmag Jagmag Jhilmil Jhilmil, Manoj Bajpayee ki incredible film Governor se. Is hafte number 19 par ye debut kar raha hai. And mujhe pura yakeen hai ki jisne bhi abhi ye gana suna hoga, uske chehre par ek muskurahat zarur aayi hogi. लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अगर ये गाना किसी छोटी फिल्म का हिस्सा ना होता तो शायद आज और ज्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे होते, और यही हिंदी फिल्म म्यूजिक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी और सबसे बड़ी सच्चाई है. आजकल गाने डिस्कवर नहीं होते, गाने डिलीवर किए जाते हैं. जो दिखाया जाता है हम वही सुनते हैं, जो प्रमोट किया जाता है हम वही गाते हैं, और जो कहीं पीछे छूट जाता है, चाहे वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसे ढूंढने का वक्त किसी के पास है ही नहीं. ये गाना अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया है और जावेद साहब ने लिखा है, और मेरी डिक्शनरी में एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, जब जावेद साहब लिखते हैं ना तो लफ्ज कभी कैजुअल नहीं होते. कुछ महीने पहले उन्होंने 120 बहादुर में भी एक गाना लिखा था जिसे अमित त्रिवेदी ने ही कंपोज किया था, एंड वो गाना मेरे लिए छुपा हुआ हीरा था.

एंड देन आई रियलाइज कि इन दोनों ने सिर्फ 3 एल्बम्स में साथ काम किया है, लेकिन आयशा से लेकर आज तक जब भी साथ किया है कुछ ना कुछ यादगार दिया है।

अरे यार, ये गाना मुझे आज भी कमजोर बना देता है। अजीब बात है ना, छोटी फिल्मों को अच्छे गानों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें सबसे कम सुना जाता है। एंड देन यू गॉट दोज बिग फ्रेंचाइज फिल्म्स जिनमें एक ओके ओके गाना भी पॉपुलर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 18 पर दिस इज चटनी, फुल भोजपुरी तड़का, एंड ये है धमाल फोर्स।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा तबीयत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: हेलो
2: कौन?
3: हेलो विपिन,
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ पासपोर्ट अप्लाई किया था।
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई तू इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी

0: चिल्लाएंगे तो अब क्यों आवाज़ें आ रही है। मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फ़ायदा है। आप बताओ कब किया था?
1: अभी पहले किया था।
0: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
1: ऑनलाइन की थी।
0: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
1: जाना जरूरी है?
0: कहाँ जा रहे हो?
1: दुबई।
0: अच्छा तो दुबई जाना है
1: भाई, जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
0: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
1: हाँ ठीक है ठीक है,
0: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
1: आपने सही कह रहा
0: है। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए।
1: नहीं बोलना।
0: भाई साहब एक बात बताऊँ?
1: बताओ।
0: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था कैसी हो
1: क्या?
0: वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
1: तो पागल है क्या?
0: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ।
1: करवा देना भी है आपसे।
0: मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे।
1: सॉरी।
0: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा, हैव अ सेफ फ्लाइट।
1: ओके।
0: आई लव यू।
1: आई लव यू टू।
2: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: Only on Mirchi. It's hot. Number 70. Hoopa.

फहीम अब्दुल्ला का सैयारा पिछले साल का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक एंथम था, हैंड्स डाउन, राइट? और इस हफ्ते भी वो नंबर 17 पर मौजूद है। लेकिन इस गाने को सुनते हुए एक ख्याल आया, बॉलीवुड का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक क्लीशे आखिर क्या है? ये नहीं कि प्यार अधूरा रह जाता है, ये है कि जब दिल टूटता है तो माइक्रोफोन हमेशा लड़के को ही मिलता है। जरा सोचिए ना, चाहे कितना ही पॉपुलर गाना क्यों ना हो।

0: माय गॉड, हर जेनरेशन का डेफिनेटिव हार्ट ब्रेक एंथम। एक आदमी गा रहा है, एक आदमी टूट रहा है, एक आदमी याद कर रहा है, और धीरे धीरे बॉलीवुड ने हमें ये बिलीव करवा दिया कि हार्ट ब्रेक का असली ब्रांड एम्बेसडर मर्द ही होता है। ये बात ही अजीब है, क्योंकि रिलेशनशिप्स में हार्ट ब्रेक दो लोगों का होता है, लेकिन गाने में रोता हमेशा एक ही है, इट्स द मैन। इस हफ्ते नंबर 16 पर है एआर रहमान का वो नहीं फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, एक ऐसा ट्रैक जो सिर्फ मोहब्बत के खोने की बात नहीं करता बल्कि किसी अपने को खोने की बात करता है, और शायद इसलिए ये इतना गहरा लगता है। लेकिन आज मुझे उस दूसरी आवाज की बात करनी है, वो लड़की जिसका दिल टूटा है, जो बॉलीवुड में हमेशा थी, बस उसे उतनी बार सेंटर स्टेज नहीं मिला, क्योंकि औरतें भी टूटती हैं, उनका भी दिल टूटता है, उनकी भी नींद उड़ती है, बस उनके दर्द को एंथम कम बनाया जाता है, और जब कभी बनाया जाता है तो कुछ बहुत ही खूबसूरत गाने पैदा होते हैं। You've heard this song, In Ravan, नंदिनी श्रीकर की आवाज, एक ऐसा गाना जो हार्ट ब्रेक को चीख कर नहीं खामोशी से जीता है। थैंक यू विशाल एंड शेखर, हियर इज माय रिवाइंड ट्रैक, दिस इज भरे नैना।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: धुरंधर का आरी आरी हफ्ते नंबर 4 पर है और एक बात माननी पड़ेगी, बॉलीवुड को नॉस्टैल्जिया से बहुत प्यार है। पुराने गाने चाहिए, पुराने हुक्स चाहिए, पुरानी यादें चाहिए, बस पुराने सिंगर्स नहीं चाहिए। सर आज सोचिए, धुरंधर में ये गाना जो आपने अभी सुना आरी आरी, वो है तम्मा तम्मा लोगे है, और साथ में है उदित जी की आवाज में ये वाला गाना। And then हाल ही में you also heard है जवानी तो इश्क होना है का ये गाना called चुनरी चुनरी, जिसमें original singer अभिजीत नहीं है।
1: तेरी चुनरी लिपट लिपट के पागल मुझे बनाए, पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए।
0: And guess what? अगला गाना काउंटडाउन पर है ऊंचा लंबा कद, एक और रिक्रिएशन। एंड मुझे रिक्रिएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सवाल जरूर है, जिन आवाजों ने इन गानों को एवरग्रीन बनाया, फॉरएवर कूल बनाया, वो आवाजें आज कहाँ हैं? आनंद राज आनंद बेंच पर, अभिजीत भट्टाचार्य बेंच पर, उदित नारायण बेंच पर, रेयरली हर्ड, लेकिन उनके गाने हर दूसरे फ्राइडे को कमबैक कर रहे हैं। बॉलीवुड को गाना याद है, गाने वाला नहीं। और फिर पिछले हफ्ते संडे के दिन इत्तेफाक से एक वीडियो देखा और स्क्रीन पर आए अदनान सामी, और फिर वही गाना जिसके चलते अदनान से प्यार हो गया था।

क्या आवाज है यार, क्या कंट्रोल है, क्या वार्मथ है। सबसे बड़ी बात, द सॉन्ग मेक्स यू फील, द सॉन्ग गिव्स यू फील्स। और तब मुझे एक सवाल खटका, व्हाई इज अदनान सामी सिटिंग एट होम? सीरियसली, आज के कितने सिंगर्स हैं जो अदनान सामी के साथ एक स्टूडियो में खड़े होकर कंपीट कर सकते हैं? यार बहुत कम। बॉलीवुड का ये सच में अजीब लॉजिक है, पुरानी आवाजों की लेगेसी कैश करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन उन आवाजों को माइक्रोफोन नहीं देना है। खैर, जब तक सिंगर्स वापस नहीं आते, उनके गाने तो वापस आते ही रहेंगे, बॉलीवुड छोड़ेगा नहीं। और इस हफ्ते नंबर 3 पर है वेलकम टू द जंगल से आनंद राज आनंद साहब का ही गाना ऊंचा लंबा का और एवर। नंबर 3।

मशरूका इस हफ्ते भी नंबर दो पर है यार। मुझे तो लगा था कि ये गाना सीधा नंबर वन तक पहुंच जाएगा इस बार, लेकिन एक बात हम बार बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, इंडिया को उसके जासूस बहुत पसंद है। और इस वक्त इंडिया का सबसे फेवरेट जासूस स्पाई है हमजा अली मजारी उर्फ जसकीरत सिंह रांगी, और शायद इसलिए शरारत 19 हफ्ते बाद भी नंबर वन पर बैठा हुआ है। लेकिन स्पाइस की बात निकली है तो 3 जुलाई को दो नए स्पाइस इस लंबी कतार में जुड़ने वाले हैं, आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ। द फिल्म इज कॉल्ड अल्फा, और मुझे लगता है अल्फा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अल्फा खुद नहीं है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली धुरंधर है, क्योंकि धुरंधर के बाद ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस टोटली बदल चुकी हैं। अब ट्रेलर में सिर्फ एक्सप्लोजन्स काफी नहीं है, अब सिर्फ ग्लोब ट्रॉटिंग काफी नहीं है, अब सिर्फ स्लो मोशन एंट्रीज काफी नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली अल्फा का ट्रेलर देखकर मुझे बार बार लगा कि मैं कुछ नया नहीं देख रहा हूं, वही फेमिलियर ट्रोप्स, वही फॉर्मूला, वही टेम्पलेट। यस, बैकग्राउंड स्कोर के कुछ मोमेंट्स जेन्युइनली इंप्रेसिव हैं, लेकिन जब एलीट असैसिंस की दुनिया में ऐसा डायलॉग आए कि वुल्फ की बेटी वुल्फ ही तो होती है, तो थ्रेट कम और टेलीविजन सीरियल ज्यादा लगने लगता है। एंड मे बी दैट्स व्हाई मैं अल्फा को अभी जज नहीं करना चाहता हूं, मैं उसे सिर्फ विश करना चाहता हूं द वेरी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि पोस्ट धुरंधर दुनिया में सरवाइव करना आसान नहीं है। अरे यार, कम से कम ऋतिक रोशन को ही सरप्राइज रहने देते, ट्रेलर में पूरी फिल्म तो वैसी दिखा दी। खैर, जिस पाए ने वो बेंचमार्क सेट किया उसका राज अभी खत्म नहीं हुआ है। जैस्मिन सैंडलर्स और मधुबंती बागची, यालीना और हमजा की शादी वाला गाना दिस इज शरारत 19th week at number 1।

0: एक और हफ्ता खत्म, कुछ गाने चार्ट्स पर चढ़ गए, कुछ नीचे आ गए और होपफुली कुछ नए ऑब्सेशंस मिल गए। ये था मिर्ची टॉप 20 का लेटेस्ट। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक नॉइज को कम सुनिए, म्यूजिक को ज्यादा। सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची.
3: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं. तुम होती तो कैसा होता. तुम ये कहती, तुम वो कहती. तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती. तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता. मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं.

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। गुलाम मोहम्मद कासिर नाम के शायर हैं, उनका ये शेर है। और आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो बढ़िया सी स्माइल दीजिए, उसके बाद ये जो हम गाना सुनने वाले हैं नाइट इन लंदन का, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी की आवाज में, इस गाने का वीडियो देखिए। अगर आपको 60s वाला लंदन देखना है, बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है। इनफैक्ट जब मोहम्मद रफी साहब इस गाने की शुरुआत करते हैं ना ओ माई लव से, उससे पहले जो गिटार बज रहा है वो इस गाने के वीडियो में एक नाव पे बैठा गोरा बजा रहा है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो
3: हाँ जी
4: विवेक जी।
3: हाँ जी बताइए।
4: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं? विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मज़े। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़ ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाज़ा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मज़े सारे मज़े लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
3: ठीक ही कह रहे हो।
4: नहीं मैंने तो देखिए मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
3: अब आपको पता ही है हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने हैं। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
4: अच्छा
3: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है हम जो मर्जी करें।
4: बिल्कुल
3: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखूंगा,
4: थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
3: हाँ हाँ जरूर जरूर आपसे जरूर मिलेंगे।
4: क्या हुआ क्या था भाभी से आपकी बात, क्या हो गई थी?
3: अरे कुछ नहीं यार।
4: नहीं फिर भी क्या मतलब, काफी चीखी की आवाज है, क्या हुआ क्या था?
3: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेज की।
4: अच्छा अच्छा
3: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
4: अच्छा ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
3: हाँ
4: अभी चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत। आप कह रहे हो आपको, आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
3: मजे आ रहे हैं,
4: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
3: अरे तेरे को मजे आ रहे हैं यार, तू मजे ले रहा फोन करके?
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

पुरानी फिल्में जिनकी शूटिंग अब्रॉड में हुई है उनमें से वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुली शॉर्ट फिल्म्स इज इवनिंग इन पेरिस। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, एंड द क्रेडिट गोज टू फिल्म के सिनेमाटोग्राफर गोपी कृष्ण। डायरेक्टर शक्ति सामंता को भी क्रेडिट जाता है। इनफैक्ट ये ना सुनने में आता है कि पेरिस में इस फिल्म की शूटिंग के लिए शक्ति सामंता सिर्फ 10 लोगों को लेके गए थे, क्योंकि तब पेरिस जाके शूटिंग करना बहुत बड़ी बात होती थी भाई। और ये भी सुनने में आता है कि जो जो लोग इस यूनिट में शामिल थे ना 10 लोग, उनको जो पेमेंट की गई थी वो काफी कम थी। क्या पेरिस घुमा दिया ना, पैसे काहे को मांग रहे हो। अच्छा, इसका जो टाइटल ट्रैक है ना, एन इवनिंग इन पेरिस, ये फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स का सॉन्ग है। तो कई लोगों के साथ उस टाइम ऐसा हुआ कि जो थिएटर लेट पहुंचे उन्होंने गाना मिस कर दिया, तो उन्होंने दोबारा से मूवी देखी वो गाना देखने के लिए। मस्त पेरिस की गोरियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं शम्मी कपूर साहब इस गाने में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

अफ्रीका में हिंद, ये एक फिल्म का नाम है, आपको पता है? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1939 की ये फिल्म है जिसकी शूटिंग अफ्रीका में हुई थी। तो वैसे अगर आप सोचें तो बाहर अब्रॉड में शूट होने वाली पहली फिल्म इसको माना जाएगा, हिंदी फिल्म की मैं बात कर रही हूँ। फिर 1954 की एक फिल्म नाज भी थी जिसकी शूटिंग अब्रॉड हुई थी, लेकिन जो फिल्म जिसकी शूटिंग एक्सटेंसिवली अब्रॉड हुई थी, यूरोप में हुई थी, वो थी संगम। फिर जिसने बाद में ट्रेंड भी चलाया था बाहर जाके फिल्में शूट करने का, या यू नो वो वाली फिल्में जो आई थी, एन इवनिंग इन पेरिस, नाइट इन लंडन, लव इन टोक्यो। इनफैक्ट लव इन टोक्यो में ना आशा पारेख जी ने कुछ हेयर क्लिप्स यूज की थी, उनको बाद में लव इन टोक्यो हेयर क्लिप्स नाम से जाना जाता था। और इस फिल्म के इस गाने के ऑडियो में जापान का फ्लेवर तो है ही, इसके वीडियो में भी है। यस, इसके वीडियो में आपको 1960s का टोक्यो जापान देखने को मिल जाएगा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: मिड और लेट 60s में ऐसी काफी मूवीज आई थी जो अब्रॉड शूट हुई थी और उनके टाइटल में भी बाहर की सिटीज का नाम था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जैसे लव इन टोक्यो, एन इवनिंग इन पेरिस, नाइट इन लंदन, और ये ट्रेंड एक्चुअली जिस फिल्म ने शुरू किया था ना उसके नाम में किसी बाहर के शहर का नाम नहीं था, लेकिन इसकी शूटिंग काफी एक्सटेंसिवली यूरोप में हुई थी। दिस मूवी वॉज संगम, मतलब 1964 की फिल्म में दिखाया जा रहा है कि कपल अपने हनीमून के लिए यूरोप जा रहा है, क्या बात है। पर अभी जो हम इसका गाना सुनने वाले हैं वो तो अपना यही ऊटी में ही शूट हुआ था। दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग रिटन बाय हसरत जयपुरी, कम्पोज बाय शंकर जयकिशन, मोहम्मद रफी की आवाज में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।
1: मेहरबान लिखूं

देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। पर ये गुल जो खिले थे कौन से गुल थे? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये ट्यूलिप्स हैं। तो इस गाने के कुछ हिस्सों की शूटिंग नेदरलैंड्स के लिस्सा शहर के केओकेनहॉफ गार्डन्स में हुई थी ना, जहाँ के ट्यूलिप्स दिखाए गए हैं। भाई दुनिया का ये बहुत ही बड़ा बगीचा है, 32 हेक्टेयर के एरिया में, और कुछ 7 मिलियन फूल यहाँ पे उगाए जाते हैं। इस जगह पे शूट करने का सजेशन यश चोपड़ा साहब को खुद अमिताभ बच्चन साहब ने दिया था, बिकॉज शूट से 1 महीना पहले ही वो वहाँ पे घूम के आए थे। क्या बात है भाई, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बगीचे। इसी बात पे सुंदर सा गाना सुन लेते हैं यहाँ पे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: हेलो
1: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
0: नहीं, कौन बात कर रहा है
1: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
0: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
1: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
0: है। अरे तो पहले ये तो बता दे कौन है, कौन?
1: ओ मेरी बात
0: कौन
1: सुन,
0: बात कौन कर रहा है?
1: ओ महेश।
0: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
1: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
0: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
1: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
0: अरे तो
1: जब डर गया था
0: तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
1: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
0: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
1: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
0: फिर वही बात को लेकर आ गया?
1: नहीं, मैं कोई बात को लेकर। और महेश मेरी बात सुन, अगर
0: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
1: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू में मैंने तुझसे
0: वाली बातें कर रहा
1: है क्या? मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहे। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
0: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
1: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
0: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
1: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
0: भाई तू है कौन?
1: नहीं मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
0: हाँ रॉन्ग नंबर है।
1: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ
0: राइट नंबर ले
1: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
0: अरे रॉन्ग नंबर,
1: अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू
0: यार।
2: मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: पुरानी चीज़ with Charu, only on

सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस बंदे ने हिंदी फिल्मों में फॉर्मूला वन कार रेसिंग इंट्रोड्यूस की थी 1972 की फिल्म अपराध में। जर्मनी में इस फिल्म की शूटिंग हुई थी और बहुत से ऐसे लोगों को लगता है कि द फर्स्ट फिल्म टू गेट शॉट इन अफगानिस्तान वाज खुदा गवाह। नो नो नो नो नो, पहली हिंदी फिल्म जो अफगानिस्तान में शूट हुई थी वो थी 1974-75 की धर्मात्मा। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी जी अफगानिस्तान में बहुत पॉपुलर हो गई थी। उनकी एक झलक पाने के लिए अफगानिस्तान का पटा आने सा तरसता था। वो वैसे इतनी सुंदर थी यार, ऊपर से उनका जो ये कैरेक्टर दिखाया गया था रेशमा इस फिल्म में, वो अलग ही गजब ढारा था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू।

पुरानी फिल्में और गाने जो फॉरेन लोकेशंस पे शूट हुए, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सो 1970 की पूरब और पश्चिम फिल्म का गाना कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, पिक्चराइज्ड डॉन मनोज कुमार एंड सायरा बानू, ये आपको पता है इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शूट हुआ था। अनदर फिल्म 1970 की प्रेम पुजारी, जो कि देवानंद साहब की फर्स्ट फिल्म एज डायरेक्टर थी, उसका गाना फूलों के रंग से वॉज शॉट इन स्विट्जरलैंड। इनफैक्ट आप जब ये गाना देखो तो उसमें बैकग्राउंड में स्विट्जरलैंड का एक बहुत ही फेमस होटल ग्रिम्सल होटल भी आपको देखने को मिलता है। फिलहाल तो यहाँ पे ये गाना ही मिल सकता है सुनने को पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारू।

भाई वैसे तो हिंदी फिल्मों में एक्सटेंसिवली फॉरेन लोकेशंस पे शूट करने का ट्रेंड संगम फिल्म ने शुरू किया, लेकिन और भी बहुत सारी फिल्में थी जो उससे पहले फॉरेन लोकेशंस पे शूट हो चुकी थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनको इतना क्रेडिट नहीं दिया जाता बिकॉज इतनी ज्यादा वहाँ पे शूटिंग नहीं हुई थी और वो फिल्में चली भी नहीं थी। जैसे 1960 में शम्मी कपूर साहब एंड पद्मिनी की एक फिल्म आई थी सिंगापुर, जिसका गाना शूट हुआ था सिंगापुर में। फिर 1962 में हांगकांग नाम की एक फिल्म आई थी और उसमें बकायदा बीच साइड पे एक पार्टी चल रही है उस टाइप का एक गाना है जो हेलन जी पे पिक्चराइज्ड है, हांगकांग चीना मीना सिंगापुर ऐसा कुछ गाना है वो। चलिए यहाँ पे हम एक और गाना सुनते हैं जहाँ पे दैट साइड ऑफ द वर्ल्ड का ही जिक्र हो रहा है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

फॉरेन लोकेशंस में शूट हुई हिंदी फिल्में और हिंदी गाने पुराने वाले। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सो वन ऑफ द फ्यू फिल्म्स जिसके कुछ पार्ट फॉरेन लोकेशन पे शूट हुए थे, ये थी 1960 की फिल्म कॉल्ड बेवकूफ, जिसमें किशोर कुमार एंड माला सिन्हा थे। इसकी कुछ शूटिंग इटली में हुई थी। ऑल्सो माला सिन्हा एंड धर्मेंद्र स्टारर आंखें फिल्म जो थी, जो कि एक स्पाई थ्रिलर मूवी थी, 1968 की सुपर हिट फिल्म। पहली बार किसी फिल्म की शूटिंग अगर बेरूत में हुई थी तो वो इस फिल्म की। इनफैक्ट इसका जो गाना है दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, जिसमें फिल्म के तीन किरदार भिखारी बन के घूम रहे हैं सड़कों पे, वो बेरूत की सड़कें हैं। इस फिल्म की शूटिंग जापान में भी हुई है। बट इसका एक और गाना है जो बहुत सुंदर है, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ, रवि की कॉम्पोजिशन, लता मंगेशकर की आवाज में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो
3: कौन?
4: हेलो विपिन,
3: कौन बोल रहा है?
4: इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
3: हाँ पासपोर्ट अप्लाई किया था।
4: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, कब अप्लाई किया था आपने?
3: भाई तो इतने धीरे के बोल रहा है।
4: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ, और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से। पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पहाड़ के फेंक देते हैं, 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है। मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
3: अभी पहले किया था।
4: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
3: ऑनलाइन की थी।
4: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से और हमारी आवाज से, अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कह दिया कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
3: जाना जरूरी है?
4: कहाँ जा रहे हो?
3: दुबई।
4: अच्छा तो दुबई जाना है?
3: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
4: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
3: ठीक है ठीक है,
4: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
3: आपने सही कह रहे
4: हैं। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
3: बताओ।
4: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
3: मैं तो पागल है क्या?
4: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ,
3: करवा देना भी है यहाँ से।
4: मरवाओगे क्या, उठ जाएंगे।
3: सॉरी सॉरी सॉरी।
4: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा, हैव अ सेफ फ्लाइट।
3: ओके ओके,
4: आई लव यू।
3: आई लव यू टू।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू।

One of the most iconic Hindi song ever shot on a foreign location is undoubtedly Do Lafzon Ki Hai Dil Ki Kahani. Mirchi sun rahe hain aap Purani Jeans par, main hoon Charu aapke saath. Chalo gaane ki video mein Italy mein Venice mein gondola ride hai, bahut sundar hai, jisko by the way film ke director Shakti Samanta ne khud shoot kiya hai, unke kisi assistant ya cinematographer ne nahi. To video to bahut badhiya hai, lekin jis tarah se iske audio mein wahan ki tune, wahan ke lyrics ko include kiya gaya hai na, that is so beautiful. Hats off to R.D. Burman. आशा भोसले जी का ये उनका गाया हुआ फेवरेट गाना, कमाल तो लिखा ये आनंद बख्शी साहब ने. और आपको पता है इसमें शुरुआत का जो वो लाला लाला वाला वोकल्स है और वो जो इटालियन में गा रहे हैं, वो एक्चुअली एक इंडियन ने गाया है, उनका नाम है शरद कुमार. तो सुन लेते हैं दिस ब्यूटीफुल मेलोडियस सॉन्ग द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से, पुरानी जीन्स पर. मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची.

0: साय तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

भाई यश चोपड़ा साहब ने स्विट्जरलैंड की लोकेशंस को इतना पॉपुलर बना दिया कि ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने ही वहाँ पे हिंदी फिल्मों की या गानों की शूटिंग की शुरुआत की थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ऐसा नहीं है, पहली हिंदी फिल्म जिसकी स्विट्जरलैंड में शूटिंग हुई थी वो थी 1964 की संगम। यश चोपड़ा साहब की पहली फिल्म जिसकी शूटिंग स्विट्जरलैंड में हुई थी वो थी 1985 की फासले। बट जिस फिल्म से यश चोपड़ा वाला स्विट्जरलैंड पॉपुलर हुआ वो थी 1989 की चांदनी। और इस पर्टिकुलर गाने को जो शूट किया यश चोपड़ा साहब ने, ये वादियों में बर्फीले पहाड़ों में साड़ी पहन के जो सारी की सारी ये लेगेसी जो है इसकी शुरुआत इसी फिल्म से तो हुई थी। श्रीदेवी ने जो साड़ियां पहनी है वो क्या लगी है भाई, कमाल है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्च।

0: बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि 1964 की मूवी संगम वो पहली फिल्म थी जो फॉरेन लोकेशंस पे शूट हुई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। देखो अगर ट्रेंड सेटिंग की बात करें ना कि जिसने फॉरेन लोकेशंस को ऐसे पॉपुलर बना दिया, देन यस दिस वाज द फिल्म। इसी के बाद वो सारी फिल्मों की झड़ी लग गई थी ना, एन इवनिंग इन पेरिस, नाइट इन लंदन, लव इन टोक्यो, अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन अगर इससे पहले की हम बात करें तो काफी मूवीज थी जिसके कुछ पोर्शंस या गाने फॉरेन लोकेशंस पे शूट हुए थे। जैसे एक तो पूरी फिल्म थी 1939 की अफ्रीका में हिंद, ये पूरी की पूरी अफ्रीका में शूट हुई थी। फिर 1954 की एक नाज नाम की फिल्म थी जिसमें अशोक कुमार थे, इसके कुछ पोर्शंस इजिप्ट में शूट हुए थे। देन 1960 में बेवकूफ नाम की फिल्म जिसमें किशोर कुमार माला सिन्हा थे, वो इटली में उसका कुछ पोर्शन शूट हुआ था। फिर 1960 की सिंगापुर, फिर 1962 की हांगकांग। और इनमें से काफी फिल्मों में ना ऐसा भी होता था कि यूनिट के जिन लोगों को फॉरेन ले जाया जाता था उनको उनकी कोई अलग से पेमेंट नहीं होती थी, या होती थी तो बहुत कम होती थी, कि बोलते थे तुमको अभी विदेश घुमा दिया, अभी और पैसे काहे के मांग रहे हो। चलिए जहां मैं यहां वहां से अब रंगून चलते हैं गाने में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो हिंदुस्तान का तेरा तू, हेलो मैं रंगून से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

0: Mirchi.
1: Iscaba la buscaba la sacaba la
2: Rápala.
1: Murga, murga. La vida para la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hello.
3: Anji.
4: Vivek ji.
3: Anji, bataiye.
4: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ. विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं.
3: या ऑफ कोर्स.
4: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं. लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मज़े. अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी. विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार. मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़ ग्लास व्लासे से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना. और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मज़े, सारे मज़े लेते हैं. लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की. देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए.
3: हाँ, ठीक ही कह रहे हो.
4: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है. ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है. लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है. अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं.
3: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है. एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने.
4: अच्छा,
3: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता. हमारा घर है, हम जो मर्जी करें.
4: बिल्कुल
3: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखना,
4: थोड़ा ख्याल रखना. मिलते हैं किस दिन?
3: हाँ हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे.
4: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
3: अरे कुछ नहीं यार.
4: नहीं, फिर भी क्या मतलब, काफी चीखों की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
3: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेज की.
4: अच्छा अच्छा.
3: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया.
4: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
3: हाँ,
4: अभी
3: इन्होंने चिल्लाई तो फिर
4: बुरा बहुत होता. आप कह रहे हो चिल्ला के, बोला क्या आपको? मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर.
3: मजे आ रहे हैं,
4: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
3: अरे तेरे को मजा आ रहा है यहाँ, तू मजे ले रहा फोन करके.
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था.
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
2: अब
4: मिर्ची का
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vid bala burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello, bhai. Wrong number se baat kar raha hai. Wrong number se.
1: Nahi, kaun baat kar raha
2: hai? Pehle bata, wrong number se baat kar raha hai.
1: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
2: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई। रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
1: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
2: ओ मेरी बात
1: कौन
2: सुन।
1: बात कौन कर रहा है?
2: ओ महेश।
1: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
2: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
1: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
2: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
1: अरे तो
2: जब डर गया था
1: तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
2: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
1: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
2: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
1: फिर वही बात को लेकर आ गया।
2: नहीं मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
1: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
2: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तो नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू मैंने
1: वाली बातें कर रहा
2: है, मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहा। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
1: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
2: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
1: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
2: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
1: भाई तू है कौन?
2: नहीं मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
1: हाँ रॉन्ग नंबर है।
2: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
1: रॉन्ग ले रहा हूँ
2: राइट नंबर ले ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
1: अरे रॉन्ग नंबर, अरे जा,
2: बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू
1: यार।
3: मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

sola, mucho en la jopaega. Con bola, con bola.

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सोल को समझना हमारी इनर पीस और लाइफ पर्पस के लिए इतना जरूरी क्यों है, आइए इस बात को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। सिस्टर, एक अनोनमस सवाल आया है। कहते हैं कि कुछ जगहों के बारे में कहा जाता है कि वहां जाकर भूत प्रेत दूर हो जाते हैं, इसके पीछे की सच्चाई क्या है और क्या ये कोई आध्यात्मिक शक्ति है? कृपया इस बात को समझाएं।
3: इसके लिए पहले ये समझना पड़ेगा जो ये इतना भूत प्रेत कहते हैं ये होता क्या है। सी बेसिकली अगर आप सोल है, बॉडी का कॉस्ट्यूम लेकर के कर्म करती है
2: जी,
3: उसके बाद कभी कभी कॉस्ट्यूम बॉडी छोड़ती है और दूसरा कॉस्ट्यूम लेती है
2: जी,
3: पर कभी कभी जब तक उसको नेक्स्ट कॉस्ट्यूम नहीं मिलता है
2: तो भटकती रहती है,
3: जिसको हम कहें भटक रही है माने उसके पास कॉस्ट्यूम नहीं है। वो सोल को कुछ भी करने के लिए कर्मेंद्रियां चाहिए, शरीर रूपी गाड़ी चाहिए कुछ भी करने के लिए। अगर उसके पास वो शरीर रूपी गाड़ी नहीं है तो उसको उस समय पर सफरिंग होती है। आपको कुछ भी करने के लिए, अपनी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको ये कॉस्ट्यूम चाहिए ही, वरना ड्राइवर है उसके पास गाड़ी नहीं है तो क्या करेगा, वो काम नहीं कर सकता। और जब तक आपके पास वो बॉडी नहीं है तो आप उस चीज को सफरिंग, जो भी हम कर्म करते हैं उसको सेटल करने के कई तरीके होते हैं। जब हमारे पास कॉस्ट्यूम होता है तो भी गलत कर्म कई रूपों से सेटल होते हैं, जिसमें कोई धन का पेपर है, तन का पेपर है, मन का पेपर है। दूसरा लेवल सफरिंग का होता है जब आपको ये कॉस्ट्यूम ही नहीं है, जिसको हम कहते हैं भटक रहे हैं। तीसरा यहाँ तक भी होता है जिसको हम कई बार कहते हैं ना, ये उसमें प्रवेश कर गया। अगर किसी के साथ आपका ऐसा बहुत ही खराब कार्मिक अकाउंट है, कोई अशुद्ध विकर्म किए हुए हैं इस प्रकार से, तो भी वो सेटल करने के लिए कई बार आत्मा किसी में प्रवेश कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये ऐसा होता है कि कार की सीट पर एक ही ड्राइवर बैठ सकता है, वहां पर अगर दो बैठे
2: तो गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी।
3: पर वो भी एक फॉर्म ऑफ सफरिंग होती है, क्योंकि मनुष्य आत्मा को अगर उसने गलत कर्म किए हैं तो उसको वो चीज सेटल करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से ये होता है, उसको हम घोस्ट नाम दे देते हैं। है कुछ नहीं, वीक सोल है जो सफर कर रही है और कई बार सेटल करने के लिए किसी के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है। नाउ किसी स्थान में इतनी शक्ति है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ स्पिरिचुअल जगहों की जो प्योर एनर्जी होती है, उस प्योर एनर्जी में वो सफरिंग कम होती है, उसको राहत मिलती है, अकाउंट जल्दी सेटल होता है और आपको थोड़ा सुकून मिल सकता है उस चीज का जल्दी। है सफरिंग और कुछ नहीं है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची 89.4।

0: आइए इस बात को समझें।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
2: सिस्टर, मुझे याद है कुछ दिनों पहले ना मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ, और उस समय मैं घर पे अकेला था। मेरे बीवी बच्चे जो हैं वो मायके गए हुए थे और मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता था। ऐसा नहीं था कि मैं अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता था, तो मैंने उनको बताया नहीं। अब क्या हुआ कि मैंने अपने जो दोस्त वगैरह हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनको भी नहीं बताया इसके बारे में, वरना वो बेकार में परेशान होते, इधर उधर फ़ोन करते, और मैं चाहता नहीं था कि बात बाहर निकले, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैं बेड रेस्ट पे था और कोई अपना काम नहीं कर पा रहा था। अब हुआ क्या, कुछ दिनों बाद जब उनको पता चला कि ऐसा हुआ है, तो जो रिएक्शन मुझे मिलने लगे वो ये नहीं थे कि भाई आप कैसे हो, पैर ठीक हो गया, सब ठीक है ना। वो रिएक्शन थे, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम हमें अपना भी नहीं समझते। और मैं सोच रहा हूँ कि यार पैर तो मेरा टूटा था, और सडनली वो जो मैं तुम्हारे बारे में बहुत परेशान था, तुम मेरे हो ही नहीं, तुम अपना मुझे समझते नहीं हो, ये मैं संभाल लूंगा, जो मेरी जो प्रतिक्रिया थी या जो मेरा फर्स्ट थॉट था वो उनके लिए तुम हमें अपना समझते ही नहीं, कैसे उसमें कैसे तब्दील हो गया।
0: जब उनका ये रिएक्शन आया तो उस चीज ने आपको तकलीफ दी?
2: नहीं, मैंने कहा अरे क्या हो गया, मैं तो
0: नहीं, लेट्स बी ऑनेस्ट, उनके रिएक्शन ने
2: नहीं मुझे तकलीफ नहीं, मैं उनको बोल रहा था अरे भाई ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं परेशान नहीं करना चाहता था आपको, सब कुछ ठीक था।
0: क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि हम अपना जीवन बिल्कुल वैसे जीते हैं जैसे हम जीना चाहते हैं, लेकिन दूसरे जब ऐसे जीते हैं जैसे वो जीना चाहते हैं तो वो हमें अनकंफर्टेबल लगता है। हमें लगता है इनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, इनको तो सपोर्ट करना चाहिए था। उनको लगता है इनको तो बताना चाहिए था, इनको छिपाना नहीं चाहिए था।
2: बिल्कुल।
0: सो एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू लिव लाइफ देयर वे। ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड इज हमें वो करना है जो हमारे लिए
2: सही है,
0: कंफर्टेबल है, लेकिन उसके बाद ये नहीं सोचे कि सारी दुनिया आपको उस चीज के लिए एक्सेप्टेंस दे। अगर आपको उनसे एक्सेप्टेंस चाहिए तो आप वो करना शुरू करें जो उनको कंफर्टेबल है। अगर आपको ये सुनना है कि हम आपके हैं, तो फिर आप अगली बार बीमार हो तो पहले कॉल करके उनको बताना। इट इज अ चॉइस, सी इट इज अ चॉइस। आपको अगर एक्सेप्टेंस चाहिए तो आपको उनके अनुसार जीवन जीना पड़ेगा।
3: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या प्यार में चिंता और केयर किसी रिश्ते की मजबूती का प्रतीक हो सकती है?

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: परिवार के बुजुर्ग अक्सर कुछ बातें अपने दिल में छुपाकर क्यों रखते हैं, आइए इसके पीछे की भावना को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: बचपन में हमने कबीर के दोहे भी बहुत पढ़े थे, और मेरे जो पिताजी हैं वो इस तरह के, वो किसी को भी किसी भी चीज के लिए तकलीफ नहीं देते, तो वो हम देखते आए हैं। तो धीरे धीरे जो आप देखते हैं वो आप सीखते हैं और वो आप इम्प्लीमेंट करते हैं। और कबीर का एक बहुत शानदार दोहा है कि रहीमन निजमन की व्यथा मन ही रखो होए, सुनी अठिले लोग सब बाटी ना लेहे कोए। इसका मतलब यह है बेसिकली कि जो तुम्हारी मन की व्यथा है वो अपने तक ही रखो, लोगों को बताओगे तो हंसी ठट्टा ही करेंगे, मजाक ही उड़ाएंगे, और आपका दुख कोई बांटेगा नहीं। तो मेरा जो इसमें इंटेंट था वो दूसरों को तकलीफ पहुंचाने का नहीं था, क्योंकि जरूरत नहीं थी।
4: इससे भी ज्यादा इसके अंदर बहुत डेप्थ है। क्यों लोग पहले कहते थे कि हर चीज छिपा के रखो, धन है वो भी छिपा करके रखो, कोई प्रॉब्लम है वो भी छिपा करके रखो, कोई घर में बड़ी बीमारी है वो भी छिपा करके रखो। क्यों? आप जितना उसको बताते हैं, जितना वो औरों तक पहुंचता है, आप एक एनर्जी अपनी तरफ इनवाइट करेंगे।
3: बिल्कुल,
4: जिस जिस को पता चलेगा वो कुछ सोचेगा।
3: अरे,
4: धन के लिए भी कहते थे उसको छिपा के रखो, क्योंकि कोई खुश होगा कोई जलस भी होगा।
3: बिल्कुल,
4: बीमारी के लिए भी आप बताएंगे, किसी के मन में सपोर्ट भी होगा, कोई इस प्रकार से भी सोचेगा अरे इनके साथ तो बहुत बुरा हुआ, भगवान ने इनके साथ बहुत बुरा किया, इनके साथ तो नहीं होना चाहिए। अब आप ऑलरेडी किसी चीज से गुजर रहे हैं, फिर वो जो सारी एनर्जी है उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है। पर्सनली आई फील ऑफकोर्स जो बहुत नियर फैमिली है वो गलत नहीं सोचती है, वो आपको सपोर्ट करेगी। तो उनको समझते हुए आप कुछ बताते हैं और मिल करके करते हैं वो जरूरी है, लेकिन बाकी अगर कोई बीमारी है या कोई दुख है वो बहुत ज्यादा औरों तक उसको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये सच बात है। वो क्या ही कर सकते हैं, वो उसके बारे में बात करेंगे, कोई मजाक उड़ाएगा, बाकी तो उस चीज को फेस आपको ही करना है। इसलिए उन चीजों को छिपा के रखने में ही भलाई है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

त्रिपुरपतिं भज विश्वनाथम् भूताधिपं भुजगभूषण भूषिताङ्गं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अगर प्रोफेशनल स्पेस में कोई आपको इमैच्योर कहे तो उस सिचुएशन को मैच्योरिटी के साथ कैसे हैंडल करें, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, मुझे ना बचपन में कॉमिक्स का बहुत शौक था, तो कई बार ऐसा होता था कि मैं स्कूल जाता था तो टेक्स्ट बुक खुला होता था लेकिन उसके अंदर एक कॉमिक होती थी, और जैसे टीचर आते थे तो वो कॉमिक गायब और ज्योग्राफी की किताब खुल जाती थी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हाल फिलहाल में मेरी एक दोस्त है जिससे मैं बात कर रहा था, उसको भी ग्राफिक नॉवेल्स और कॉमिक्स का बहुत शौक है। उसका हाल फिलहाल में अप्रेजल हुआ, वो करीब 40-45 साल की है, और वो कहती है कि मेरे अप्रेजल में बड़ी अजीब चीज हुई। मेरे मैनेजर ने कहा कि तुम बहुत अच्छा काम करती हो और बहुत डिपेंडेंट हो, तुम्हारी टीम भी तुमसे बहुत खुश है, परफॉर्मेंस तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम बहुत इमेच्योर हो। तो वो कहती है क्यों? कहते नहीं, मैंने देखा है तुम ग्राफिक नॉवेल्स पढ़ती हो, तुम कॉमिक्स पढ़ती हो, परियों की कहानी फेरी टेल्स पढ़ती हो, तो आई कैनॉट ट्रस्ट अ पर्सन हु सो इमेच्योर। एंड शी वाज एब्सोल्युटली मतलब गॉबस्मैक्ड, उसको समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो वो मुझे बोल रही थी और मैं सोच रहा था कि कभी कभी क्या होता है कि अगर हमको किसी चीज से खुशी मिलती है उसका जो रिएक्शन दूसरों का होता है वो बहुत अलग होता है, लेकिन ये हमारे प्रोफेशनल लाइफ में इम्पैक्ट क्यों करे?
4: नहीं करना चाहिए। इफ देयर इज समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, इफ देयर इज समथिंग दैट यू आर एक्साइटेड अबाउट, वो कंटिन्यू करना चाहिए एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू परफॉर्म वेल।
3: यस,
4: सिर्फ उसके लिए कि दूसरा आपके लिए सही नहीं सोच रहा है या कुछ सोच रहा है, उसके लिए नहीं छोड़ना चाहिए। सी आई ऑल्सो फील कि हमें अपनी लाइफ को वैसे डिजाइन करना चाहिए जो वो लाइफ आपको खुशी भी दे, सिर्फ कम्फर्ट दे, मनी दे, पोजिशन दे, नहीं। A lot of smart people are not happy, which is very sad. So it is not only important कि आप professionally अच्छा कर रहे हैं, materialistic level पर अच्छा कर रहे हैं, आप खुश होने जरूरी हैं। और अगर ये कुछ चीजें आपको खुशी देती हैं और किसी को immature लगती हैं, तो मुझे लगता है नहीं छोड़ना चाहिए, continue करना चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है, अनोनिमस है, लिखते हैं कि आत्मा का सफर एक युग से दूसरे युग में कैसे होता है।
3: उसके लिए पहले हमें युग समझना पड़ेगा, जिसमें हम कई बार कहते हैं कि सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, विच मीन्स गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। अब ये जो परिवर्तन होता है, एक है दुनिया का परिवर्तन, वर्ल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन, और एक है आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन। विच मीन्स कि जब आत्मा अपनी जर्नी शुरू करती है, सोल जब जर्नी शुरू करती है, जब सोल परफेक्ट है तो वर्ल्ड भी परफेक्ट
2: होगा, राइट।
3: हमें लगता है दुनिया बदलती है इसलिए हम बदल जाते हैं, दुनिया ऐसी है ना इसलिए मैं ऐसा हूँ,
2: उल्टा होता है।
3: जैसे जैसे सोल की प्योरिटी कम होती जाती है,
2: तो हमारे आसपास भी चीजें बदलने लगती
3: है, वो वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाई देगा
2: जी।
3: तो जब सोल अपने सफर में आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे ये भूलने लगती है कि मैं सोल हूँ, और अक्वायर्ड चीजों से आइडेंटिफाई करने लगती है, चाहे वो बॉडी है, चाहे वो लेबल्स है, चाहे वो, तो उसकी ईगो डेवलप होने लग जाती है। फिर जहाँ ईगो है, अटैचमेंट है, एंगर है, उसके कारण उसके जो कर्म है, वो जो पहले सत्कर्म थे, वो कोई सत्कर्म होंगे, कोई विकर्म होंगे, और इसीलिए धीरे धीरे सत्ययुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग। तो कलयुग आया इसलिए हम बन गए, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी प्योरिटी कम होती गई, हम बॉडी कॉन्शियस होते गए, हमारी ईगो अटैचमेंट बढ़ती गई, हमारे से कर्म ऐसे होते चले गए, इसीलिए कलयुग आ गया है। तो ये आत्मा का सफर है, आत्मा पुनर्जन्म लेती जाती है, और जितना डिप्लीट होती जाती है तो दुनिया भी उसके साथ डिप्लीट होती है, इसीलिए स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा।
2: वाह, क्या बात,
3: विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन।
2: सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। आपके बातों से मुझे एक फ्रेंच साइंटिस्ट फिलोसोफर है, उनका नाम मुझे याद नहीं, पेर कुछ नाम उनका है, तो उन्होंने कहा था, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हैविंग अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस।
3: एब्सोल्युटली।
2: और आप जो कह रही हैं कितनी खूबसूरती से आपने समझाया है। और एक और चीज मुझे याद आया कि आशुतोष राणा बहुत कमाल तरीके से ये समझाते हैं, जो आपने कहा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, तो कहीं मौका मिले तो जरूर आप वो देखें, और ये बहुत बेहतरीन तरीके से वो समझाते हैं, जैसा कि आपने समझाया।
3: कॉन्शियसनेस क्रिएट्स रियलिटी, आपकी जो रियलिटी है वो कॉन्शियस
2: वही बाहर रिफ्लेक्ट होती है।
3: तो जब आत्मा प्योर है
2: तो सब कुछ प्योर होगा, सही
3: है। देवी देवताओं के लिए क्या कहते हैं, सतयुग में हम कहते हैं देवी देवता थे
2: जी।
3: पर देवी देवताओं की जो क्वालिटीज है उसमें क्या कहते हैं, सर्वगुण संपन्न,
2: बिल्कुल,
3: सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मतलब वो जो सोल है वो 100% है, प्योर है, उसके अंदर हर प्रकार की क्वालिटीज है, 100% प्योरिटी है, कोई वायलेंस नहीं है, तो दुनिया भी सतयुग है
2: जी, बिल्कुल।
3: और फिर नीचे उतरते उतरते क्योंकि विकारों के वश हो जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
2: तो धीरे धीरे उनका पतन होने लगता,
3: तो धीरे धीरे कलयुग। फिर धर्म स्थापक आकर के कहते हैं, आप सतयुगी बनेंगे तो सतयुग अपने आप आ जाएगा।
2: वेरी नाइस, वेरी नाइस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: कभी तो हंसाए।
1: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है, लिखते हैं कि सुप्रीम सोल क्या है।
3: सुप्रीम सोल माना सोल
2: जी,
3: आत्मा। सुप्रीम सोल माना परमात्मा।
2: परमात्मा जी।
3: तो जैसे हम कहते शरीर का पिता है,
2: हाँ,
3: ऐसे आत्मा का पिता, उसको आप सुप्रीम फादर कहें, सुप्रीम सोल कहें, गॉड फादर कहें, भगवान अल्लाह ईश्वर कहें
2: जी।
3: पर सुप्रीम का मतलब है कि वो क्वालिटीज में सुप्रीम है।
2: जैसे अगर हम उसमें सारे हैं,
3: हाँ, जैसे अगर हम सोल के लिए कहेंगे कि उसकी जो ओरिजिनल नेचर है वो शांति है, शक्ति है, प्रेम, आनंद, खुशी है, तो परमात्मा के लिए हम कहते हैं वो शांति का सागर है।
2: हाँ, बिल्कुल,
3: वो शक्तियों का भंडार है। और इसीलिए जब सोल डिप्लीट हो जाती है, जैसे आपका फोन है उसकी बैटरी डिप्लीट हो गई
2: तो चार्ज करना,
3: तो आप पावर हाउस से उसको कनेक्ट करेंगे तो वही करंट फ्लो होगा। ऐसे ही आपका भी ओरिजिनल नेचर शांति है, पर अगर आप डिप्लीटेड फील कर रहे हैं, तो आप जब शांति के सागर से कनेक्ट करते हैं तो आप उसी शांति को एक्सपीरियंस करेंगे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

not. Healthy mind के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. Till then, सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 only on मिर्ची. It's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, एक सवाल आया है श्रेया घोष से, बैंडल यानी कि बंगाल में है। वो लिखती हैं कि सिस्टर, क्या आप प्लीज बता सकती हैं कि मैं अपना फोकस कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ती हूँ और उसके बाद मेरा ध्यान भटक जाता है, फालतू बातें सोचने लगती हूँ, जैसे स्कूल में क्या हुआ, ट्यूशन में क्या हुआ, मम्मी ने क्या बोला, फ्रेंड्स ने स्कूल में मेरे साथ कैसा बिहेव किया, वगैरह वगैरह।
2: फोकस और कॉन्सेंट्रेशन अगेन एक स्ट्रॉन्ग माइंड की निशानी है। जब आपका मन शक्तिशाली है, शक्तिशाली मन किसको कहते हैं, मुझे जो सोचना है, जितना समय सोचना है, अपने मन को जहाँ लगाना है मैं लगा सकता हूँ।
1: जी,
2: मेरा मन मेरे कंट्रोल से चलता है।
1: जी,
2: कमजोर मन का क्या हो गया, वो आपको कंट्रोल कर रहा है।
1: हाँ।
2: कह रहे हैं मेरा मन।
1: हाँ।
2: मेरा मन कहते, तेरा मन तो नहीं कहते ना, मेरा मन कहते हैं।
1: हाँ।
2: तो मैं मन का मालिक होना चाहिए।
1: हाँ।
2: लेकिन मन मेरा मालिक बन गया।
1: सही बात है।
2: अब उसको जहाँ जाना है, जो सोचना है, वो कर रहा है।
1: वो कटी पतंग की तरह कहीं भी जा रहा है।
2: कहीं भी जा रहा है। एंड यू लूजिंग टाइम, यू लूजिंग फोकस, यू लूजिंग कॉन्सेंट्रेशन। अब अपने मन को कैसे शक्तिशाली बनाए वो देखते हैं। दो तीन चीजें। एक, आपका मन क्योटिक रहेगा अगर आप बहुत इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं।
1: जी,
2: वो नॉइजी हो जाएगा, वो नहीं कंसंट्रेट कर सकता। ये चीज बहुत समझने की, हमें लगता है हमें बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है सब कुछ पता होना चाहिए, तब हम बहुत इंटेलिजेंट होंगे। बट टू बी वेरी फ्रैंक, आप बहुत इन्फॉर्मेशन लेकर के उस मन को प्रोसेस नहीं कर पाता।
1: सही बात है।
2: वो भी एक मशीन की तरह है, उसको भी उतनी इन्फॉर्मेशन देना होता है, जैसे जैसे डाइजेशन है, पेट है। आप कितना भी हेल्दी खाना खिला दो,
1: सही बात है, लेकिन अगर ज्यादा खाया तो फिर वो तो इंडिजेशन तो हो गया।
2: हाँ, मैंने जैसे कोई कितनी भी अच्छी चीज हो, पानी है,
1: सही बात है,
2: बहुत अच्छा है,
1: लेकिन ज्यादा पीने पे बीमारी हो,
2: ज्यादा पीने पर बीमारी होगी। सिमिलरली फॉर इन्फॉर्मेशन, आप देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, गाने हैं, फिल्म्स हैं, न्यूज है, इतना इतना इतना अंदर ले रहे हैं, द माइंड डजंट गेट इनफ टाइम टू प्रोसेस,
1: राइट,
2: दैट्स व्हेन थोड़ी देर के बाद वो उस प्रोसेस करने में चला जाता है।
1: सही बात है।
2: जो आपने सुना है वो उसको डाइजेस्ट करने में, उसको प्रोसेस करने में चला जाता है। दैट इज वन थिंग। सेकंड चीज है, थोड़ा मी टाइम निकालना चाहिए टू प्रोसेस अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके फ्रेंड्स ने कहा या किसी ने कुछ कहा। कोई चीज अगर आपको डिस्टर्ब कर रही है, आप अगर उसको एनालाइज करके, उसको वर्क करके, उसको क्लोजर नहीं देते
1: तो चलता रहेगा,
2: तो वो चलता रहेगा, फिर वो पास्ट बन जाता है। फिर हम कहते हैं ना कि 80% टाइम तो हमारा मन या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। क्यों? आपने उसी दिन उसको लेट को नहीं किया।
1: जी।
2: उसको क्लोजर नहीं दिया, उसको फुल स्टॉप नहीं लगाया, आपने हीलिंग नहीं करी। सम 20 मिनट्स, 10 मिनट्स जर्नलिंग करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा मी टाइम। दिस इज जस्ट अ बज वर्ड, मी टाइम। है क्या मी टाइम? मी टाइम इज बेसिकली स्पेंडिंग दैट टाइम विद यू एंड हीलिंग योर सेल्फ। कुछ भी नेगेटिव है, कुछ भी एक्स्ट्रा है, उसको आप करें तो आप प्रेजेंट में रह पाएंगे और फोकस कर पाएंगे। एंड थर्ड, ट्राई एंड स्टडी इन द मॉर्निंग।
1: हाँ, ये आपने पहले भी कहा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वाइब्रेशन बहुत अच्छे होते हैं।
2: नहीं, बच्चे थके हुए मन से पढ़ रहे हैं।
1: हाँ, सुबह सुबह आपकी एनर्जी भी हाई होती है, डिस्टर्बेंसेस नहीं होते हैं, बहुत खूबसूरत समय होता है।
2: थका हुआ मन कैसे कॉन्सेंट्रेट करेगा? थका हुआ मन मना आप सुबह उठे, समझो आप लेट उठे, फिर 6-8 घंटे तो आजकल बच्चे क्या करेंगे, ये देख लिया, फ्रेंड्स के साथ चले गए, स्कूल कॉलेज में चले गए, अब रात को 8 बजे पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं।
1: मन थका हुआ,
2: मन थका हुआ है। थका हुआ मन फोकस और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है।
1: सही कह रही।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया सिस्टर। गुड मॉर्निंग। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने गुस्से में एक दूसरे को कुछ बोल दिया, कुछ मैंने भी गलत बोल दिया, कुछ उसने भी गलत बोल दिया। वो हर्ट हो गई है और मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। किसी और के फोन से किसी तरह उससे बात हुई तो बोलती है कि एक साल वेट करो। अभी हम दोनों अलग रह रहे हैं, मेरा घर टूटने से मैं बचा सकूं, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? प्लीज हेल्प मी।
3: इसीलिए हम कई बार कहते हैं अगर गुस्सा आ भी जाए ना, बोलना नहीं चाहिए। बोलने में क्या होता है, आपने फिर रियलाइज किया, आपने अपोलोजाइज भी कर लिया। सामने वाला जब बहुत कमजोर होता है तो उसको पकड़ लेता है, रिपीट करता रहता है, हर्ट क्रिएट कर लेता है, ब्लेम आपको करता है। एक्चुअली उस व्यक्ति ने तो एक बार कहा, फिर सॉरी भी कह दिया, तो बहुत ज्यादा मेजर मिस्टेक उसकी नहीं है। पर अगर कोई इमोशनली वीक है तो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाता है। वही चीज रिपीट करता रहता है और जख्म बना लेता है। अब उन्होंने जख्म बना लिया, आपने सॉरी भी कह दिया। अब हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि उनके जख्म, हर जख्म हील होता ही है। कोई समझ से हील होता है, कोई समय से हील होता है।
2: क्या बात, बहुत बढ़िया। कोई नॉलेज से, कोई टाइम से,
3: होना तो समझ से चाहिए। ये क्या बात हुई कि एक साल वेट करो? जो चीज एक साल में ठीक करनी है वो एक सेकंड में भी ठीक हो सकती है। एक साल में तो वो जख्म और गहरा भी हो सकता है, लेकिन अभी वो उनके ऊपर है। समझ तो क्या कहती है, मेरी साड़ी पे दाग लगा, मैं एक साल बाद थोड़ी ना धोऊंगी। दाग लगा है ना, तो हम तो चाय भी कप रख करके कहेंगे पहले धोए फिर पियेंगे, नहीं तो ये गहरा हो जाएगा।
2: बिल्कुल।
3: तो समझदार तो क्या करेगा, अच्छा हो गया ना, फुल स्टॉप। मैंने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, फुल स्टॉप। बात करना शुरू करो, गांठ को तोड़ करके फेंको। लेकिन अगर समझ नहीं है तो समय हीलिंग करता है। टाइम इज द बेस्ट हीलर कहते हैं। टाइम हीलिंग कैसे करता है, वो चीज मर्ज होने लग जाती है। न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू सीन्स लाइफ की होती है, तो वो पीछे वाले का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं उनके लिए। आप उनको अच्छा वाइब्रेशन भेज सकते हैं। आप परमात्मा से पॉजिटिव वाइब्रेशन लेकर के आप उनको सेंड कर सकते हैं, जो उनकी हीलिंग फास्ट करेगा। तो आप डेडिकेटेड टाइम फिक्स करें, 10 मिनट्स 15 मिनट्स। आप मेडिटेशन में बैठे, उस मेडिटेशन में आप बोलें कि मैंने आपको दुख दिया, मेरा भाव नहीं था, आई एम वेरी सॉरी। अब मैं परमात्मा से हीलिंग एनर्जी लेकर आपको भेजता हूँ, क्योंकि मेरी भावना है कि आप खुश रहे।
2: क्या बात, बहुत बढ़िया।
3: मेरे लिए आपकी खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बस अभी इतना ही चाहता हूँ कि आप खुश रहे, ये मेरी अंदर की शुभ भावना है। मॉर्निंग इवनिंग आप ये करते जाए, आपका वाइब्रेशन उनको हील करेगा। और वो हीलिंग हो जाएगी तो वो जितना समय लगना उससे बहुत कम समय में वो ठीक हो जाएंगे।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: देखो, अलार्म क्लॉक और हमारे घर वालों में एक ही डिफरेंस है। अलार्म क्लॉक को स्नूज किया जा सकता है, लेकिन घर वालों को नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स, जो कि ऑफिशियली शुरू हुआ है। यहाँ पर कॉफी से पहले गॉसिप और चाय से पहले थोड़ी चटपटी बातें होती है, जो कि आज हम करने वाले हैं। अगर तुम अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हो, या फिर सबवे पकड़ रहे हो, या फिर अपने लैपटॉप को खोलकर खुद का ही रिफ्लेक्शन देख रहे हो, या फिर परौंठे पलट रहे हो, मैं तुम्हारे साथ में रहने वाले हो अगले कुछ घंटों तक। वैसे एक बात बताऊं, देसी लोग दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन सुबह सुबह का पहला थॉट तो सेम ही होता है, बस 5 मिनट और। और अगर तुम भी आज इसी थॉट के साथ उठे हो, तो फटाफट से मुझे बताओ तुम्हारा सुबह उठने का रूटीन क्या होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्किन केयर, आई एम टॉकिंग अबाउट उठने के लिए क्या रिचुअल्स तुम्हें करने पड़ते हैं कि फाइनली बेड से उतर जाओ, अपने कामकाज से लग जाओ। और आर यू लाइक सुपर एक्टिव, आँख खुलते ही बेड से उतर जाते हो और वर्कआउट करने लग जाते हो? मेरा नाम है प्रिसिला, मुझे इंस्टा और एक्स पर तुम डीएम कर सकते हो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: गले हे कभी आना तुम मेरे गले,
1: कभी आना तुम अपनी गली,
0: कभी आना तू मेरी गली।
2: मिर्ची
3: इसका बना उसका बना सबका बना, मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: हेलो,
4: हाँ जी
5: विवेक जी।
4: हाँ जी बताइए।
5: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं?
4: या ऑफ कोर्स।
5: विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मज़े। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़ ग्लास व्लासे से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये लेते हैं मजे सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
4: हाँ ठीक ही कह रहे हो।
5: नहीं मैंने तो देखिए मैंने हमदर्दी में कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
4: अब आपको पता ही है हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
5: अच्छा
4: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है हम जो मर्जी करें।
5: बिल्कुल
4: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखना,
5: थोड़ा ख्याल रखना, मिलते हैं किस दिन?
4: हाँ हाँ जरूर जरूर आपसे जरूर मिलेंगे।
5: क्या हुआ क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
4: अरे कुछ नहीं यार।
5: नहीं फिर भी क्या मतलब, काफी चीखी होगी आवाज है, क्या हुआ क्या था?
4: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी थी बस हमारी मिसेस की।
5: अच्छा अच्छा।
4: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
5: अच्छा ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
4: हाँ अब इन्होंने चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत।
5: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
4: मजे आ रहे
5: हैं, बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
4: अरे
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला, सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और चलो रिवाइंड मारते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले 1855 झारखंड में संथाल रिबेलियन शुरू हुई। सिद्धू एंड कानू मुर्मू ने हजारों लोगों के साथ ब्रिटिश रूल और जमींदारी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। ये इंडिया के अर्लिएस्ट ऑर्गेनाइज्ड फ्रीडम मूवमेंट में से एक माना जाता है। फिर 1859 में And imagine this, एक फ्रेंच डेयरडेविल ब्लॉन्डन ने नाइग्रा फॉल्स को टाइटरोप पे क्रॉस करके दिखाया। भाई मैं अपने घर पर सीधी फर्श पर चलते चलते गिर जाती हूँ। 1908 में साइबेरिया में हुआ टंगुस्का इवेंट रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड ब्लास्ट, इतना पावरफुल था कि 8 करोड़ पेड़ गिर गए। एंड 1934 का दिन हिस्ट्री के लिए एक डार्क चैप्टर था। हिटलर ने नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइव्स नाम का ब्रूटल पर्ज शुरू किया, जिससे उसने अपनी पावर और मजबूत की। वेल, हिस्ट्री हमें एक ही बात सिखाती है, कुछ लोग बैलेंस बनाते हैं और कुछ लोग बैलेंस बिगाड़ देते हैं दुनिया का। फिलहाल तुम अपनी लाइफ का बैलेंस बनाओ, अपने काम भी करते जाओ और मुझे भी साथ में सुनते जाओ। मेरा नाम है प्रिसिला, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट करना चाहते हो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्ची दर गानों का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। अब यहाँ गॉसिप जो है एकदम गर्मा गर्म आती है, और अभी मैं फिलहाल बॉलीवुड बज लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। डांसर एक्टर राघव जुयाल एंड इन्फ्लुएंसर एक्टर निहारिका एनएम ने इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसी पिक्चर्स डाली है कि फैंस ने कॉमेंट सेक्शन को CID ऑफिस बना दिया है। अब सवाल ये है कि हार्ड लॉन्च है या सॉफ्ट लॉन्च है, या फिर ये सिर्फ प्रोजेक्ट लॉन्च है, क्योंकि दोनों ने ऑफिशियली अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया है। लेकिन स्पेक्यूलेशन का इंजन जो है वो फुल टर्बो पे चल रहा है, और मसाला तब और बढ़ गया जब रैपर रफ्तार ने कमेंट्स में बस 3 इविल आई इमोजीज ड्रॉप कर दिया। बस फिर क्या था, इंटरनेट ने कहा हमें क्लूज मिल गए हैं। अरे भाई, इमोजी भी एविडेंस बन गए आजकल, तुम समझ नहीं रहे हो। सच क्या है, रिलेशनशिप है या अपकमिंग कोलैबोरेशन है? अभी तो सस्पेंस ही सस्पेंस है फिलहाल। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में एक बात तो पक्की है कि एक पोस्ट 1000 थ्योरीज को जन्म दे देती है। वैसे अगर तुम भी ऐसी थ्योरीज में बिलीव करते हो तो मुझसे शेयर करो तुम्हारी थ्योरी। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्चीदार बैंगर्स चलाते हैं, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: आज का वेदर इतना मूडी है ना कि सुबह बोलेगा गुड मॉर्निंग और दोपहर तक आते आते सरप्राइज मैं तो तंदूर बन गया हूँ कह सकता है तुमको। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। ये ऑफ कोर्स है मिर्ची मॉर्निंग। तो सीन क्या है फिलहाल, अभी टेम्परेचर है 68 डिग्री फारेनहाइट और स्काई जो है वो मोस्टली क्लियर है। मतलब मॉर्निंग वॉक का अगर तुम्हारा मूड है ना तो बस सनस्क्रीन लगाओ और काम पे चले जाओ। दोपहर तक मर्क्यूरी फुल एटीट्यूड दिखाने वाली है, हाई जाने वाला है 91 डिग्री फारेनहाइट तक और 2 से 3 बजे के बीच में पार्टली क्लाउडी स्काइज भी दिखाई देंगे। 3 बजे के बाद क्लाउड्स थोड़े से और बढ़ेंगे, लेकिन गुड न्यूज ये है कि रेन का कोई चांस नहीं है। 0 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड। अम्ब्रेलास को घर पर रहने दो, पानी की बोतल को साथ में ले जाना, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड क्योंकि ऊपर से तो बरसने नहीं वाला है। अच्छा ये सुनो, आज है ना एक्सट्रीम हीट वार्निंग भी इशू हुई है। वार्निंग क्या है जी, वार्मिंग ही है, साथ में एयर क्वालिटी अलर्ट भी है। मतलब अगर आउटडोर प्लान्स बन रहे हैं तुम्हारे स्पेशली आफ्टरनून में तो थोड़ा सा इजी लेने का है मामला। हाइड्रेट करते रहना, लाइट क्लोथ यानी कि लेयर के प्लेयर बनकर जाना बाहर और अगर पॉसिबल हो तो एसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो आज के दिन। साथ साथ में अपना SPF 50 वाला सन प्रोटेक्शन, सन ब्लॉक, सनस्क्रीन भी लगाकर जाना। वैसे भी देसी लोग हर सीजन में एक ही डायलॉग बोलते हैं, बस थोड़ी सी चाय मिल जाती तो मौसम का और मजा आ जाता। तो चाय भी पीते ही रहना एकदम हॉट हॉट, जस्ट लाइक द सॉन्ग कमिंग अप नेक्स्ट। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलती हूँ तुम्हें नेक्स्ट आवर में। अभी फटाफट से नोट करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम। इंस्टा और एक्स पर जाकर मुझे फॉलो करो, MIRCHIPRIS पर, और व्हाट्सएप करो मुझे अभी के अभी 9033 मिर्ची पर, यानी कि 9033647244। Stay tuned and stay hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हेलो मेरे दोस्त, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स का वो सेगमेंट जहाँ पर हम अपडेट्स लाते हैं अराउंड द वर्ल्ड की। सबसे पहले इलॉन मस्क इज बैक इन द ट्रिलियनेयर क्लब। टेस्ला और स्पेसएक्स के शेयर प्राइजेस में जंप के बाद उनकी नेटवर्थ एक ही दिन में ऑलमोस्ट 69 बिलियन डॉलर्स बढ़ गई। मतलब हम लोग यहाँ पर कैशबैक का नोटिफिकेशन देख के खुश हो जाते हैं और वहाँ पर वो बिलियंस में खेल रहे हैं।
2: और नंबर टू पर एक FIR रजिस्टर हुई है अगेंस्ट क्रिकेटर शशांक सिंह एंड हिज फादर शैलेश सिंह, अ रिटायर्ड IPS ऑफिसर, आफ्टर देयर कुक अक्यूज्ड देम ऑफ असॉल्ट, अब्यूज and wrongful confinement in Bhopal. The investigations are ongoing.
1: Aur finally, FIFA se football fans ke liye bahut hi badi sad news hai. Four-time champions Germany FIFA World Cup se bahar ho gaye after losing a dramatic penalty shootout to Paraguay. Match extra time ke baad 1-1 tha, lekin penalties mein Paraguay ne history create kar di. Football sach mein wo game hai jahan par final whistle se pehle prediction karna hi nahi chahiye. Main hoon Prisala tumhare saath mein. This was Mirchi आवर का 3 फॉर दिस आवर। मिलती हूँ तुम्हें नेक्स्ट आवर में विद द नेक्स्ट मिर्ची आवर का 3। तब तक के लिए तो मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Gambala. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
3: नहीं, कौन बात कर रहा है?
4: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
3: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
4: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
3: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
4: ओ मेरी बात सुन।
3: कौन बात कौन कर रहा है?
4: ओ महेश।
3: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
4: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
3: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
4: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
3: अरे तो
4: जब डर गया था
3: तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
4: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
3: अबे मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
4: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा हूँ?
3: फिर वही बात को लेकर आ गया?
4: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
3: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
4: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझसे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू मैंने तुझसे
3: वाली बातें कर रहा क्या?
4: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रही, और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
3: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
4: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
3: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
4: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
3: भाई तू है कौन?
4: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
3: हाँ रॉन्ग नंबर है।
4: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ राइट नंबर ले, ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
3: अरे
4: यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे, चल ठीक है निकल तू यार,
3: चल जा, चल काम कर, चल जा।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज का क्विक टेक अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है। व्हाट्सएप फाइनली तुम्हारी प्राइवेसी को थोड़ा सा और स्टाइलिश बना रहा है। अब जब तुम किसी नए इंसान से चैट स्टार्ट करोगे और अपना नंबर नहीं देना चाहते हो, ये जरूरी भी नहीं कि अब उसको नंबर दो। बस अपनी सेटिंग्स में जाओ, अकाउंट में जाओ, यूजर नेम में जाकर अपना एक यूनिक यूजर नेम रिजर्व कर सकते हो। और अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम यूजर नेम अवेलेबल है तो उसे भी क्लेम कर सकते हो। मतलब अब हाय व्हाट्सएप नंबर की जगह हाय व्हाट्स योर यूजर नेम पूछा जाएगा। और अगर तुम अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हो, किसी के साथ सिचुएशनशिप में और नंबर शेयर नहीं करना चाहते हो, तो यूजर नेम दे सकते हो, प्रीटी मच लाइक टेलीग्राम। एंड स्पीकिंग ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट, अगर 4th of July तुम भी बिना कुछ कहे स्पार्कल करना चाहते हो तो ये सुनो, कैरेट लेन इजलिन लेकर आए हैं अपना गॉर्जियस एवरीडे डायमंड कलेक्शन जस्ट फॉर यू। सिर्फ गहने नहीं है यहाँ पर, तुम्हारे किरदार की कहानी बयां करते हुए नायाब हीरे हैं वहां पर। वाओ, व्हाट पावरफुल लाइन। और सिर्फ 4th and 5th July के लिए डायमंड ज्वेलरी पर फ्लैट 20% ऑफ मिल रहा है। सो वेदर यू आर गिफ्टिंग टू समवन स्पेशल, यू आर प्लानिंग टू पॉप द क्वेश्चन, या फिर खुद को हैप्पी हैप्पी फील कराना है, सेल्फ गिफ्टिंग का कुछ प्लान है तुम्हारा, तो लेट द डायमंड्स डू ऑल द टॉकिंग। एंड अभी फिलहाल इफ यू लाइक माई टॉकिंग देन गो एंड चेक आउट माई इंस्टाग्राम एंड एक्स प्रोफाइल्स। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, यानी कि MIRCHIPRIS। और साथ में व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग। मेरे बर्थडे बेबीज कैसे हैं आज? जून 30th के जो बर्थडे बेबीज हैं उनके साथ कौन से सेलिब्रिटीज शेयर कर रहे हैं अपना हैप्पी वाला बर्थडे? लेट्स फाइंड आउट। ओलंपिक्स के GOAT माइकल फेल्प्स, द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन एवर। फिर बॉक्सिंग रिंग के लेजेंड नन अदर देन माइक टाइसन। हॉलीवुड एक्ट्रेस लिजी कैपलन भी आज ही अपना बर्थडे मनाती है। और हमारे देसी कलाकार भी है बहुत सारे, दी एवरग्रीन एक्टर अरविंद स्वामी, जिनकी स्माइल पर 90s का हाफ इंडिया फिदा था। तेलुगु सुपरस्टार अलारी नरेश, एक्ट्रेस अविका गौर, फुटबॉलर डेंजल फ्रैंको और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रिया सूले भी आज अपना हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और अगर आज के दिन तुम भी इस धरती पर आए थे तो टैलेंट, डिटर्मिनेशन और थोड़ी सी मेन कैरेक्टर एनर्जी तो पैकेज डील में आई थी तुम्हारे साथ। मेरी तरफ से ये दुआ है कि तुम्हारा नया साल जो है वो हिट प्लेलिस्ट की तरह हो, जिसमें एड्स कम हो, हैप्पीनेस ज्यादा हो और जीरो बफरिंग हो। और हाँ, अगर तुम्हारा आज हैप्पी बर्थडे है तो अपने बर्थडे के इनवाइट्स और केक्स मुझे भेज सकते हो इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस। यहीं पर तुम मुझे किसी और को विश करने के लिए बर्थडे शाउट आउट भी भेज सकते हो, एंड आई विल टेक देयर नेम ऑन एयर एंड ऑल्सो रीड आउट योर विशेज। तो फटाफट से वो भेजो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, 9033647244 इज माई नंबर। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Alright, my Mirchi fam, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. क्विक पॉज लेंगे हम यहाँ पर म्यूजिक का, क्योंकि अब टाइम आ चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर सुनने का गोल्ड रेट अपडेट.
2: राज जोल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग. गोल्ड रीडिंग एट $4,330 $4,330 पर ट्रे आउंस के साथ गोल्ड के प्राइस अबाउट $200 आउंस अपवर्ड ट्रेंड पर है. $200 ट्राई आउंस गोल्ड के प्राइसेस पिछले हफ्ते से ऊपर चले गए हैं. इससे पहले गोल्ड और ऊपर जाए, राज ज्वेल्स के साथ स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन में आप 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड. आप गोल्ड का प्राइस आज लॉक करके ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं अप्रूव होने पे, और 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ बिना किसी हिडन फी के 9 मंथ की फाइनेंसिंग ऑप्शन में ज्वेलरी आपकी और गोल्ड का प्राइस लॉक करके आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं. कैसे? आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
1: देयर यू गो, योर गोल्ड रेट अपडेट डन एंड डस्टेड. अब फटाफट से मुझे फॉलो करो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड अब बारी है मिर्ची आवर का 3 की। यहाँ पर तुम्हें मिलती है 3 अपडेट्स। सबसे पहले एक सीनियर यूएस ऑफिशियल ने कहा है कि इंजीनियरिंग टैलेंट और वर्कफोर्स के स्केल पर इंडिया ही वो देश है जो चाइना को मैच कर सकता है। उन्होंने इंडिया को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की ग्लोबल रेस में एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर भी बताया है। नंबर 2 पर इंडिया ने 1 जुलाई से कमर्शियल बायर्स के लिए पेट्रोल और डीजल रिटेल सेल पर लगी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी है। ये टेम्पररी मेजर्स ग्लोबल एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रप्शन के दौरान लगाए गए थे। अब रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट होने के बाद फ्यूल परचेजिंग रूल्स फिर से नॉर्मल हो रहे हैं। एंड फाइनली फीफा से ब्राजील ने जापान को 2-1 से हरा दिया और विनिंग गोल आया 95th मिनट में। मतलब फुटबॉल भी कभी कभी ना बॉलीवुड के क्लाइमैक्स से कम ड्रामेटिक नहीं होता। लास्ट मिनट तक टीवी ऑफ करने वाले फैंस जो है उनको ये अच्छा लेसन मिला होगा। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: कौन?
2: Hello, Vipin.
1: कौन बोल रहा है?
2: इस्ता. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
1: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
2: आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
1: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
2: भाई मानक मेरे बॉस सो रहे हैं. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता है पावड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारी फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी. फिर चिल्लाएंगे तो अब क्यों आवाजें आ रही है. मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था. कहते इधर देश का पासपोर्ट का अभी आग लगा था इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो. आप क्या फायदा है आप बताओ. कब किया था?
1: अभी पहले किया था.
2: अच्छा अच्छा. आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
1: ऑनलाइन की थी.
2: भैया इस तो बोल. अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार. हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
1: जाना जरूरी है.
2: कहाँ जा रहे हो?
1: दुबई.
2: अच्छा तो दुबई जाना है.
1: भाई जल्दी जाना है. तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
2: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा. बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए. हो सकता है कल ही मिल जाए.
1: हाँ ठीक है ठीक है.
2: मैंने सही किया ना बता दिया? वरना ये तो बौखला जाता ना. ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता.
1: आपने सही कह रहे.
2: हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए.
1: नहीं बोलना.
2: भाई साहब एक बात बताऊँ?
1: बताओ.
2: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था कैसी हो. वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
1: मैं तो पागल है क्या?
2: चिल्लाओ मत. ठीक है मैं रखता हूँ.
1: करवा देना भी है
2: आपसे. मरवाओ के क्या उठ जाएंगे.
1: सॉरी.
2: ठीक है चलो. पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट.
1: ओके.
2: आई लव यू.
1: आई लव यू टू.
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स। अब हम पता करते हैं हमारे सितारे आज क्या कह रहे हैं।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी कि मेष राशि, आज जुपिटर और वीनस दोनों तुम्हारी साइड पर हैं। स्माइल करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस पहनो, क्रिएटिव लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, लक वहीं पर मिलने वाला है। लकी कलर इज कोरल ऑरेंज, लकी नंबर इज 18। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज अपॉर्चुनिटी के बिना अपॉइंटमेंट आ सकती है। ज्यादा ओवरथिंकिंग मत करो, कभी कभी यस सबसे इंटेलिजेंट आंसर होता है। लकी कलर इज एमरल्ड, लकी नंबर इज 5। जेमिनी यानी मिथुन राशि, प्लान्स डिले हो रहे हैं, कोई बात नहीं, चिल मारो। मर्क्यूरी थोड़ा सा ड्रामा कर रहा है, कॉफी पी लो, थोड़ा सा पेशेंस धर लो, रीसेट भी कभी कभी प्रोग्रेस होता है। लकी कलर इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 27। कैंसर यानी कर्क राशि, डॉलर की टेंशन थोड़ी सी साइड पे रखो अभी, यूनिवर्स तुम्हारी स्प्रेडशीट से ज्यादा स्मार्ट है, ट्रस्ट करो, सब स्टेप बाय स्टेप सेटल हो जाएगा। लकी कलर इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 11। लियो यानी कि सिंह राशि, फ्रेंड्स के साथ मिलकर आज कुछ प्रोडक्टिव हो सकता है, टीम वर्क आज तुम्हारा सुपर पावर है, बस मीटिंग को चाय ब्रेक मत बना देना। लकी कलर इज रॉयल गोल्ड, लकी नंबर इज 39। वर्गो यानी कन्या राशि, हर रिक्वेस्ट पे हाँ बोलना जरूरी नहीं होता, आज अपनी एनर्जी जो है उसे सेव करो, रिमेम्बर सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 24। ये था आज का पहला राशि जोन, बाकी बची हुई राशियों को लेकर दूसरे राशि जोन में आऊंगी थोड़ी सी देर में। तब तक तुम्हारे लिए ये मिर्चीदार बैंगर्स प्ले करूंगी और तुम्हें याद दिलाऊंगी कि मुझे जाकर इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रेस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मुझे मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हो। मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: वेलकम बैक माई दोस्त, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारी होस्ट। शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स और ये चल रहा है राशि जोन पार्ट टू।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लिब्रा यानी कि तुला राशि, आज स्लो होना बिल्कुल ओके है। हर वक्त हसल मोड में रहना जरूरी नहीं है, रिचार्ज भी प्रोडक्टिविटी का ही पार्ट होता है। लकी कलर इज मिंट ग्रीन, लकी नंबर इज 30। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, करियर स्पॉटलाइट तुम्हारी तरफ मुड़ सकती है। किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान से मिलने का चांस मिले तो कॉन्फिडेंटली हेलो बोलना। अपॉर्चुनिटी नॉक करे तो हेडफोन्स उतार लेना। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 8। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, आज लोग थोड़े ज्यादा ओपिनियनेटेड लग सकते हैं। हर डिबेट जीतना जरूरी नहीं है, कभी कभी पीस भी विनिंग की स्ट्रेटजी होती है। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 22। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, पार्टनर शिप्स और जॉइंट प्लान्स थोड़ा सा स्लो चलने वाले हैं। गुड, इससे तुम्हें रीथिंक करने का मौका मिलेगा। बेटर प्लान, बेटर रिजल्ट्स। लकी कलर इज चारकोल, लकी नंबर इज 41। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, कंप्लेनर्स की वॉल्यूम आज हाई हो सकती है, लेकिन तुम अपनी फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव ही रखो, बिल्कुल मिर्ची की तरह। हर बैटल ज्वाइन करना जरूरी नहीं होता है, कुछ बैटल्स छोड़ देना चाहिए। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 13। पाइसीज यानी मेन राशि, आज किसी की हेल्प करने का मौका मिले तो मिस मत करना। तुम्हारी काइंडनेस किसी और के दिन को कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकती है। और कार्मा अटेंडेंस जरूर लगाता है, समझे। लकी कलर इज रोज पिंक, लकी नंबर इज 36। एंड दैट्स इट फॉर योर राशि जोन पार्ट टू। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम अक्रॉस सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और एक्स पर, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी चलाते हैं मिर्ची दर बैंगर्स तुम्हारे लिए। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: बस यार आज की मिर्ची मॉर्निंग्स यहीं तक, पता नहीं चला यार कब चाय ठंडी हो गई और शो जो है वो खत्म हो गया। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर टाइम विथ मी। लेकिन जाने से पहले तुम्हें कुछ बताकर जाती हूँ। माइकल जैक्सन की लाइफ पर बन रही है माइकल नाम की मूवी जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड $977 मिलियन की कमाई करके हाईएस्ट ग्रॉसिंग बायोपिक ऑफ ऑल टाइम का क्राउन अपने नाम कर लिया है। इसमें माइकल जैक्सन का रोल उनके ही नेफ्यू जाफर जैक्सन ने प्ले किया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म ने ओपेनहाइमर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है उसे बहुत पीछे छोड़ दिया है। मतलब किंग ऑफ पॉप का मैजिक आज भी फुल वॉल्यूम पर बज रहा है या फिर लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं। और ऑनेस्टली माइकल जैक्सन के सॉन्ग सुनते ही हम सबके अंदर का वो मून वॉकर थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाता है, राइट? चाहे घर पर हो या ऑफिस के कॉरिडोर में हो, अपने आप डांस निकल जाता है। वैसे अब निकलने की बात से मुझे याद है कि मुझे भी निकलना है यहाँ से। मेरा शो खत्म हो चुका है, मेरा पैसा हजम नहीं हुआ है, अभी मैं खर्च करूंगी जाकर। लेकिन अभी के लिए इतना ही। मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस पर। तब तक के लिए तुम मुझे जाकर फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, वहां पर ही अपनी दोस्ती पक्की होगी MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। याद रहेगा ना? अभी के लिए ये याद रखो, खाओ पियो ऐश करो एंड बी रियली रियली गुड। टाटा बाय बाय फ्रॉम मी, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: क्या आपको भी एक टाइम पे परवीन बाबी और जीनत अमान में बड़ा कंफ्यूजन होता था, दोनों एक जैसी लगती थी?
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।
2: आपको भी ऐसा लगता था तो गिव मी अ हाई फाइव।
1: छोटी होती ऐसी कंफ्यूजन बहुत होती थी ना, जैसे मुझे एक बड़ी कंफ्यूजन होती थी नेल्सन मंडेला और मंडल कमीशन में।
2: वेल लेट्स नॉट गो देयर, पॉलिटिकल मामला है, सेंसिटिव मामला है, हम फिल्मों पे वापस आते हैं।
1: दो गानों में भी मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी, एक तो ओ मेरे सोनारे सोनारे सोनारे और एक ओ मेरी सोनी। बड़ी मुश्किल से बड़े टाइम के बाद क्लैरिटी मिली कि ओ मेरे सोनारे सोनारे तीसरी मंजिल का गाना है, शब्बी कपूर साहब आशा पारेख पे पिक्चराइज्ड, एंड ओ मेरी सोनी मेरी तमन्ना यादों की बारात का गाना है, पिक्चराइज्ड ऑन विजय अरोड़ा एंड परवीन बाबी एंड जीनत अमान। गाना सुन लेते हैं, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Rani Jeans with Charu, only on Mirchi. Mirchi.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Murga, murga. Naveed wala murga. Mirchi murga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Anji.
3: Vivek ji.
2: Anji, bataiye.
3: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ. विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं.
2: या ऑफ कोर्स.
3: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं. लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मज़े. अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी. विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार. मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़, ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाज़ा नहीं होता ना. और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मज़े, सारे मज़े लेते हैं. लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की. देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए.
2: ठीक ही कह रहे हो.
3: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है. अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं.
2: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने. अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने.
3: अच्छा,
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता. हमारा घर है, हम जो मर्जी करें.
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो, बट मैं ध्यान रखूंगा,
3: थोड़ा ख्याल रखना. मिलते हैं किस दिन?
2: हाँ हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे.
3: क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
2: अरे कुछ नहीं यार.
3: नहीं, फिर भी क्या, मतलब काफी चीखी हुई आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की.
3: अच्छा अच्छा.
2: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया.
3: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
2: हाँ, अब इन्होंने चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत.
3: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर.
2: मजे आ रहे हैं,
3: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
2: अरे तो मजा आ रहा है, यहाँ तू मजे ले रहा
4: फोन
2: करके.
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट, ये पका.
0: पुरानी जींस विद चारू, ओनली ऑन

0: भाई अनुराधा पौडवाल वैसे तो 90s की प्रोमिनेंट सिंगर रही हैं, लेकिन इनके करियर की शुरुआत 70s में हुई थी एंड शी रोज टू फेम इन 80s। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो उन दिनों किस तरह से रिकॉर्डिंग होती थी, किस तरह से गाने बनते थे, क्या खूबसूरती होती थी, सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: उन दिनों में ये होता था कि इफ देर वॉज अ स्मॉल मिस्टेक ऑल्सो तो एवरीबडी हैड टू, मतलब दोबारा से पूरा गाना पड़ जाता था, बजाना पड़ जाता था। यू हैड टू बी मोर प्रिपेयर्ड कि ये नहीं होता था कि चलो एक वर्ड गलत गा दिया तो उतना एक वर्ड आज के जैसे। एंड देन ऑफकोर्स एवरीबडी न्यू कि क्या गाना चल रहा है, तो म्यूजिशियंस मतलब फुल ऑर्केस्ट्रा के साथ हम लोगों की कभी कभी रिकॉर्डिंग्स में 2-3 घंटे लग जाते थे, कभी दिन भर लग जाता था। और मुझे याद है कि स्पेशली सुभाष घाई जी के लिए तो 2-2 दिन तक रिकॉर्डिंग चलती थी, तो उस वक्त की वो ब्यूटी एक अलग ही थी,
0: ब्यूटीफुल। लेकिन अभी हम जो गाना सुनने वाले हैं वो ऐसा ब्यूटी टाइप का नहीं है, वो थोड़ा बीस टाइप का है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

आपको पता है देवानंद साहब अपनी डिस्कवरी जीना तमान को किस नाम से बुलाते थे? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो उनको बुलाते थे जीनी बेबी कह के। जी, एंड अपनी बुक में उन्होंने ये मेंशन भी किया है कि उनके मन में जीना तमान के लिए एक टाइम पे फीलिंग्स आ गई थी। सो ये वन साइडेड फीलिंग्स थी बिकॉज जीना तमान यूज टू लुक अप टू हिम एज हर मेंटोर ओनली। हाय, ये लव इश्क प्यार मोहब्बत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सीन क्रिएट कर देता है कई बार, और आप भी एक बढ़िया सा सीन क्रिएट कीजिए ना जिसमें आपकी मुस्कान जा रही है कान तक। और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों।

एक बहुत ही सुंदर गाना दो सुंदर आवाजों में। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। 1969 की फिल्म प्यार का मौसम का गाना तुम बिन जाऊं कहां, जो मोहम्मद रफी साहब और किशोर कुमार साहब दोनों की आवाजों में रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि दो अलग अलग किरदारों पे पिक्चराइज था। एक तो फिल्म के जो हीरो हैं शशि कपूर साहब, उन पे जो पिक्चराइज था वो रफी साहब की आवाज में था, बिकॉज ये एक रोमांटिक सॉफ्ट वर्जन था। इसके वीडियो में शशि कपूर साहब हैं और आशा पारेख जी हैं, इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग। लेकिन जो दूसरा वर्जन है किशोर कुमार साहब वाला, वो भारत भूषण जी पे पिक्चराइज था। भारत भूषण जी जो शशि कपूर के फादर प्ले करते हैं, और इसका आप वीडियो देखेंगे तो वो गाना गा रहे हैं अपने उनकी फैमिली साथ में, उनकी बीवी और बच्चा साथ में है, छोटा सा बच्चा और उनकी वाइफ। तो बिल्कुल ही अलग फील है, रफी साहब वाला जहाँ रोमांटिक है, ये वाला सोलफुल है। और यहाँ हम कौन सा वर्जन सुनने वाले, वेल जो यूजुअली सुनते हैं उससे डिफरेंट। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची। तुम

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

0: मिड 60s में FTII पुणे से अपना एक्टिंग कोर्स करने के बाद बॉम्बे में काफी स्ट्रगल करने के बाद जब काम नहीं मिल रहा था तो असरानी साहब FTII में ही एक्टिंग के प्रोफेसर बन गए, साथ साथ अपनी स्ट्रगल भी कर रहे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी इसी इंस्टीट्यूट में गेस्ट फैकल्टी थे। असरानी साहब अक्सर उनसे मिलते रहते थे, काम मांगते रहते थे। एक बार ऋषिदा जब गुड्डी फिल्म की कास्टिंग के लिए इंस्टीट्यूट आए तो क्या हुआ, सुनिए एक बार असरानी साहब ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था।
1: उनके दो तीन असिस्टेंट आए साथ में आए थे, मैंने उनको पूछा कि भाई कौन सी फिल्म है, क्या है? बोले कुछ नहीं, एक लड़की ढूंढ रहे हैं वो गुड्डी के लिए, बाकी तो कुछ नहीं, और ये बताते कुछ है नहीं, कहानी में कौन है, क्या है क्या है। बोले काफी मैंने पूछा उनसे तो बोले हमारा नाम लेना मत यार तुम, एक छोटा सा रोल है जो एक लड़का गाँव से आता है हीरो बनने के लिए और एक्स्ट्रा बन जाता है जूनियर आर्टिस्ट, मगर हमारा नाम मत लेना। उसमें गुलजार साहब भी थे, सब बता के चले गए। अब वो आए रिश्तेदार वहाँ से लड़की का जय बहादुर से मिलके वापस कार में बैठने लगे तो मैंने कहा दादा हाँ बताएगा, हम बताएगा भाई, बट मैंने कहा ये सिलेक्ट हो गए क्या? नहीं नहीं अभी स्क्रीन टेस्ट होगा, हम देखेगा। ओके मैंने कहा दादा हमारा भी कुछ तुमको बोला ना, हम करेगा करेगा, मैंने कहा 3 साल हो गया करेगा करेगा बोलता, कब करेगा?
0: वेल इसके आगे क्या हुआ सुनेंगे थोड़ी देर के बाद, राइट हियर पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जींस चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, बना। मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
3: नहीं, कौन बात कर रहा है
4: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
3: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
4: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
3: है। अरे तो पहले ये तो बता दे कौन है, कौन?
4: ओ मेरी बात सुन,
3: कौन बात कौन कर रहा है?
4: ओ महेश।
3: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
4: तो दे जब जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
3: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
4: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
3: अरे तो
4: जब डर गया था,
3: तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
4: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
3: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
4: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा?
3: आदमी फिर वही बात को लेकर आ गया?
4: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
3: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश क्यों कहे जा रहा है?
4: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू में मैं कोई पागल वाली बात नहीं कर रही, और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
3: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
4: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना,
3: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर, पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
4: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
3: भाई तू है कौन?
4: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
3: हाँ रॉन्ग नंबर है।
4: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ
3: राइट नंबर ले
4: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
3: अरे रॉन्ग नंबर, अरे जा,
4: बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
3: चल जा, चल काम कर, चल।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: पुरानी जींस with Charu only

0: लिए FDII पुणे आए और किसी तरह ऋषिदा के असिस्टेंट से बात करके असरानी साहब ने ये पता लगा लिया कि इस फिल्म में एक ऐसा रोल है जो शायद उनके लिए ठीक हो सकता है। इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में असरानी साहब ने क्या कहा था।
1: तो मैंने उनको बोला, दादा गाड़ी में बैठते, एक है एक लड़का आता है गाँव से हीरो बने। कौन बोला तुमको ये बोला? कौन कीरे जी होशी कीरे? और सब जो जितने असिस्टेंट थे उनको, तुम किसने बोला कि होशी कीरे? कौन बोलता कहानी? बाप रे, मैंने बोला माफ कर दो मुझे मत दो। बोला बोला ना हम चिट्ठी भेजेगा। बड़े डांटते आके चले। और उस वक्त क्या था, जब चिट्ठी कोई किसी की आती थी बाहर से कहीं से भी, नोटिस बोर्ड पे लगा देते थे वहां से पिकअप कर लो। तो मैं रोज देखता था कोई चिट्ठी आ जाए। फिर एक दिन चिट्ठी आई और उसमें नाम था जया भादुरी। इससे पहले कि वो पहुंची बॉम्बे, मैं पहुंच गया बॉम्बे। और जाके मैंने बोला दादा, बोले तुमको थोड़ी चिट्ठी लिखा है। फिर उनको दया आगे होगी। फिर स्क्रीन टेस्ट हुआ उनका और ये दो सीन का रोल मुझे दिया उन्होंने गुड्डी में। वहां से शुरू,
0: और यहां से जो शुरू हुआ तो 50 साल का एक मैग्निफिसेंट ब्रिलियंट करियर बन गया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू, आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: देख रे एक ट्रक आ रहा।
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल,
1: सिग्नल को तोड़ दो बात बड़ी सिंपल।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू।

0: ओ भाई भाई भाई भाई भाई भाई, पहली फुर्सत में जाके एक फिल्म देखो।
1: फिर जी सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो मेरा मूवी रिकमेंडेशन है 1973 की फिल्म दो फूल, और इसमें दो फूल कौन है? पुट्टन और छुट्टन, दो भाई लुक्खे लफंगे लेकिन रईस। रईस बाप की बिगड़ी औलाद जो हार्मलेस है लेकिन आवारा है, जिसे जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। और ये किरदार निभाए हैं पुट्टन एंड छुट्टन वाले महमूद साहब और विनोद मेहरा जी ने।
0: जी
1: इसमें अशोक कुमार भी हैं जो इनके फादर बनते हैं, जीवन साहब भी हैं, और महमूद साहब का डबल रोल है इसमें, एक बंदर भी है। तो बेसिकली इन केयरफ्री केयरलेस लड़कों को इनका बाप घर से निकाल देता है, उसके बाद ये क्या शरारत करते हैं और कैसे फिल्म आगे बढ़ती है और क्या गचड़ पचड़ कंफ्यूजन होती है, इज द होल फन। महमूद साहब भाई क्या कॉमेडी उनकी, हैट्स ऑफ वंस अगेन। ए बाय द वे, इसी मूवी से इंस्पायर्ड है 1993 की मूवी आंखें, गोविंदा चंकी पांडे वाली, तो मिस मत करना। फिल्म का नाम दो फूल। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

वो एक कांस फिल्म फेस्टिवल होता है ना, वो तो आपको पता है उसके बारे में। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जी वही फिल्म फेस्टिवल जिसमें फिल्मों की बात कम होती है, उसमें लोग क्या अतरंगी कपड़े पहन के आ रहे हैं उसकी ज्यादा बात होती है। अच्छा, सो कांस फिल्म फेस्टिवल में एक सेगमेंट होता है कांस क्लासिक्स, जहाँ पे क्लासिक फिल्में शोकेस की जाती हैं। और पहली इंडियन फिल्म जिसे वहां शोकेस किया गया था और उस फिल्म की टीम को इनवाइट किया गया था, वो फिल्म थी गाइड। सो 2008 में देवानंद साहब बकायदा कांस गए थे, वहां के रेड कार्पेट पे चले थे और ये गाइड फिल्म वहां पे शोकेस हुई थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

आजकल चिट्ठियां विट्ठियां कोई लिखता भी है कि नहीं लिखता है? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक टाइम था जब चिट्ठियां लिखना फिर उन चिट्ठियों के जवाब का इंतजार करना हमारा फेवरेट टाइम पास हुआ करता था, नहीं क्या छोटे होते? और सिर्फ रोमांटिक चिट्ठियां नहीं भाई, हम अपने रिश्तेदारों को भी चिट्ठियां लिखते थे, कजिन्स को भी चिट्ठियां लिखते थे, कोई हमारा दोस्त दूसरे शहर में रहता है उसको भी चिट्ठी लिखते थे, पेन फ्रेंड्स हम बनाते थे उनको भी चिट्ठी लिखते थे। और चिट्ठी लिखने भेजने के बाद उसके जवाब का जो इंतजार होता था, अच्छा फोन पे लैंडलाइन फोन पे भी बात हो जाती थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो जो लिखे हुए लफ्ज पढ़ने में उसमें से जो इमोशंस निकलते थे उनको फील करने में जो मजा आता था ना, वो मजा अलग ही था भाई। इसीलिए मैं ऐसे सोच रही थी कोई चिट्ठियां आजकल लिखता भी है कि नहीं लिखता है, मुझे तो बस बैंक की चिट्ठियां आती हैं और कोई चिट्ठी आती नहीं है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप मुझे चिट्ठी ना से हेलो हाय लिख सकते हैं इंस्टाग्राम पे @rj.charu rj.charu ये मेरा यूजर नेम है। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सका बना, बना। मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो,
3: कौन?
4: हेलो विपिन,
3: कौन बोल रहा है?
4: इस्ता, इस्ता, इस्ता, इस्ता। मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
3: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
4: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
3: भाई तो इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
4: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से, पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं। 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे, उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाजें आ रही है। मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा था इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
3: अभी पहले किया था।
4: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
3: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी।
4: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
3: जाना जरूरी है?
4: कहाँ जा रहे हो?
3: दुबई।
4: अच्छा तो दुबई जाना है
3: भाई, जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
4: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
3: हाँ ठीक है ठीक है,
4: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
3: आपने सही कह रहे।
4: हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
3: बताओ।
4: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी ही बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ, पापा हैं बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
3: मैं तो पागल है क्या?
4: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ।
3: करवा देना भी है
4: आपसे। मरवाओ के क्या, उठ जाएंगे।
3: सॉरी सॉरी सॉरी।
4: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
3: ओके ओके,
4: आई लव यू।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

0: अब बहनों और भाइयों, 1968 का ये सुपरहिट गीत जो गीत माला में पायदान नंबर 29 पर रहा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ब्रह्मचारी फिल्म का दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, कंपोज्ड बाय शंकर जयकिशन, रिटन बाय हसरत जयपुरी एंड संग बाय मोहम्मद रफी। और क्या सिंगिंग है रफी साहब की इस गाने में भाई,
1: मतलब दो लाइन ऊंचे सुर में फिर दो लाइन एकदम नीचे सुर में। कल तेरे जलवे पराए भी होंगे लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी ऊंचे सुर में, और फिर फूलों की डोली में होगी तू रुखसत लेकिन महक मेरे सांसों में होगी नीचे सुर में।
0: ब्रिलियंट ब्रिलियंट सिंगिंग रफी साहब, सदके वारी जाऊं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: रेखा हमेशा वक्त से आगे चली हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है 1983-84 में उन्होंने अपनी फिटनेस को लेकर एक ऑडियो कैसेट रिलीज की थी। इस बारे में उसी दौरान एक बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: मैंने कुछ साल पहले एक्सरसाइज योगा करना शुरू किया। उससे पहले मैं कभी योगा करती नहीं थी, किसी किस्म का एक्सरसाइज नहीं करती थी। फिर मैंने सोचा आई लाइक व्हाट आई डिड, काफी मुझे फर्क पड़ा योगा करने से। उस वक्त मैं कम फिल्मों में काम कर रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं फिल्मों में काम करूं कि नहीं करूं। मेरे पास बहुत वक्त, मतलब फ्री टाइम आई हैड। एंड देन रमा बंस, शी इज वेरी गुड एट योगा, तो कहने लगे कि अगर आपको इतना अच्छा लग रहा है तो व्हाई डोंट यू कम आउट, यू बीइंग अ फिल्म स्टार, एंड व्हाई डोंट यू कम आउट विद द टेप। तो वो टेप काफ़ी पॉपुलर भी होगा और एंड यू यू नो बिकॉज यू आर डूइंग इट, कोई नहीं तो आपके फैंस जरूर खरीदेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स अ गुड आइडिया, इट्स एन ऑडियो टेप, इट्स नॉट अ वीडियो टेप। तो मैंने किया, बाय गॉड्स ग्रेस इट्स अ वेरी बिग हिट।
0: वेल, इस ऑडियो कैसेट का नाम है रेखाज माइंड एंड बॉडी टेम्पल और इसकी एक कॉपी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, जिसमें इस ऑडियो के साथ रेखा की एक्सरसाइज और योगा फिटनेस के कुछ फोटोज भी हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

1973 की फिल्म राजा रानी का एक बहुत ही पॉपुलर गाना रहा है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये पॉपुलर गाना इज इंस्पायर्ड बाय और सैम्पल्ड फ्रॉम एक अंग्रेजी गाना जो 1969 में रिलीज हुआ था। बैंड का नाम द फिफ्थ डायमेंशन, गाने का नाम एज ऑफ एक्वेरियस। सुनिए जरा थोड़ा सा। समझ में आया आपको कौन सा गाना है ये? Written by आनंद बख्शी, sung by आशा भोसले and भूपिंदर, composed by R.D. बर्मन। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: ये अपने टर्म्स पे जीने को रिबेलियन कब से बोलने लगे?
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्चे पे ट्यून्ड इन हो आप, और अक्सर रिबेलियन को लेकर एक स्टीरियोटाइप बनाया गया है कि भाई जो इंसान समाज के सेट रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता वो रिबेल होता है। बट एज पर मी, जो इंसान अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीना चाहता है इज नॉट अ रिबेलियन बट अ नॉर्मल इंडिविजुअल, आई गेस। इनफैक्ट इस चीज के बारे में अचानक चर्चा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रिसेंटली इम्तियाज अली से एक इंटरव्यू में एक इंसान ने पूछा कि भाई आपकी फिल्मों की जितनी प्रोटैगनिस्ट्स होती हैं वो अपने घर से भागना ही क्यों चाहती है, वो रिबेल क्यों है। जिस पे उन्होंने कहा कि भाई कोई भी सेटअप अगर किसी इंडिविजुअल के लिए सही नहीं लग रहा, वहां वो काफी रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा है, बंधा हुआ फील कर रहा है, then he or she, irrespective of his or her gender, must just leave the space. और सही भी है ना, अगर कोई जगह आपको बांध के रख दे रही है, आपको अपनी जिंदगी पूरी तरीके से जीने का मौका नहीं दे रही, तो आपको स्पेस चेंज कर लेना चाहिए। एंड दैट माई डियर फ्रेंड doesn't मेक यू a रिबेलियन। It is as human as every other thing that we do. बाकी आपका इस चीज पे क्या ख्याल है? Do let me know about that. मिर्ची श्रुति के नाम से हम Facebook या Insta पे connect कर सकते हैं। Till then, stay tuned. It's hot.

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. La virva la murga. Mirci, murga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Anji.
2: Vivek ji.
1: Anji, bataiye.
2: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं।
1: या ऑफ कोर्स।
2: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मज़े। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़ ग्लास व्लासे से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाज़ा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मज़े, सारे मज़े लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
1: हाँ, आप ठीक ही कह रहे हो।
2: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
1: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
2: अच्छा,
1: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
2: बिल्कुल
1: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखना,
2: थोड़ा ख्याल रखना, मिलते हैं किस दिन।
1: हाँ हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
2: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
1: अरे कुछ नहीं यार।
2: नहीं, फिर भी क्या मतलब, काफी चीखियों की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
1: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेज की।
2: अच्छा अच्छा,
1: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
2: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
1: हाँ, अभी
2: इन्होंने चिल्लाई
1: तो फिर बुरा बहुत
2: होता। आप कह रहे हो चिल्ला के बोला क्या आपको, आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर,
1: मजे आ रहे हैं,
2: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
1: अरे तेरे को मजा आ रहा है यार, तू मजे ले रहा फोन करके?
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: ऑलराइट, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू, मैं तो फिल्मची गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार, जिसके थ्रू मैं आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को जगाने की कोशिश करती हूँ। सो द ड्रिल इज कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे डीएम्स में अपना नंबर भेजने के लिए, ताकि मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत कर सकूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है जसजोत कौर, जो थी तो अपने ऑफिस में बट मैंने कॉल किया तो थोड़ा टाइम निकाल लिया।
3: बिल्कुल और मजा बहुत आता है। देखो हम वही वो ट्यूनिंग करते हैं जिसमें हमें मजा आता है।
0: हाँ,
3: तो ये वाला ना बड़ा नया कॉन्सेप्ट लगा था मुझे, आया था, और हम ये तो बड़े ध्यान से सुनते हैं जब आंसर्स आते हैं ना, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे।
0: ओके, फिर तो आपके इंटरेस्ट के लेवल को आप चेक करते हैं कि आप कितना कितने पानी में
3: हैं। टेंशन हो रही है। ओके
0: ओके
3: डन।
0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ये डायलॉग किस फिल्म में?
3: सलमान ऑब्वियसली, एंड मूवी नेम इज वांटेड।
0: बहुत बढ़िया। वांटेड में राधे की गर्लफ्रेंड कौन है?
3: आयशा टाकिया।
0: आयशा टाकिया की फिल्म जिसमें आत्मा कार चलाती है?
3: टार्जन।
0: में आत्मा किसकी होती है?
3: अजय देवगन।
0: अजय देवगन की फिल्म जिसमें उनको अपने से 24 साल छोटी लड़की से प्यार हो जाता है?
3: दे प्यार दे।
0: बहुत बढ़िया। दे दे प्यार दे 2 में देवगन की गर्लफ्रेंड के पापा कौन है?
3: माधवन।
0: आर माधवन किस फिल्म में NRI डॉक्टर बनते हैं जो इंडिया आके शादी करने वाले हैं?
3: तनु वेड्स मनु
0: की फीमेल लीड कौन है?
3: कंगना रनौत
0: किस फिल्म में एक एलियन असैसिन बनी है?
3: क्रिश।
0: हाँ, यस, क्रिश 3 है। वैसे क्रिश 3 में रोहित की गर्लफ्रेंड कौन है?
3: प्रियंका चोपड़ा
0: की फिल्म एज जंगली बिल्ली
3: डॉन
0: में जंगली बिल्लियाँ किसको पसंद है?
3: शाहरुख खान।
0: आ गए आपके शाहरुख। शाहरुख खान की फिल्म जिसमें ही इज नॉट अ टेररिस्ट?
3: माई नेम इज खान
0: में ब्यूटी सलोन किसका होता है?
3: काजोल।
0: काजोल किस फिल्म में वास्को गमला बोलती हैं?
3: कभी खुशी कभी गम
0: में गुड लुक्स किसकी प्रायोरिटी है?
3: करीना देबो।
0: करीना कपूर की फिल्म जिसमें वो एक बच्ची को बॉर्डर क्रॉस करवाती है?
3: भाईजान।
0: सही जा रहे हैं,
3: बजरंगी भाईजान।
0: बहुत बढ़िया। बजरंगी भाईजान में मुन्नी को अपनी पीठ पे कौन लेके चलता है?
3: सलमान खान
0: किस फिल्म में लोगों की पुंगी बजाते हैं?
3: दबंग।
0: नहीं, यहाँ पे आप अटक गई। बट कोई नहीं, गेम को इस लेवल तक जो पहुंचाया है आपने, उसके लिए ये टाइटल तो जरूर मिलेगा।
1: मिर्ची फिल्म ची।
0: तो बाबू मोशा है आज की हमारी पहली मिर्ची फिल्म ची इज नन अदर देन जसजोत कौर। अब इसके आगे का गेम अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
2: मैं तो मिर्ची फिल्मची गेम की बात कर रही हूँ। आपके दिमाग के घोड़े किधर किधर दौड़े, उनको जरा लगाम लगाइए। चलिए वापस हम गेम पे आते हैं। बेसिकली इस गेम की आज शुरुआत मैंने की नॉन अदर देन जसजोत कौर से, और वो हमारी पहली मिर्ची फिल्मची ऑलरेडी बन चुकी है। मिर्ची गॉट स्टक एट अ पॉइंट, और उसके आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है राजदीप, जिनको मैंने कॉल किया तो उनकी बड़ी ही अतरंगी सी सिचुएशन पता चली है। सबसे पहले कैसे हैं आप सर?
3: आई एम गुड, बट द फ्लाइट इज गोइंग टू टेक ऑफ इन अनदर 2 मिनट्स।
2: ओके ओके ओके, नेवर माइंड, बट क्या हम ये 2 मिनट आपका इस्तेमाल कर लें? आई जस्ट वांट टू चैलेंज, सो वुड यू वांट टू ट्राई फॉर वंस?
3: या व्हाई नॉट।
2: ओके, तो जहां पे हमारे फर्स्ट कॉलर अटके, सलमान खान किस फिल्म में लोगों की पुंगी बजाते हैं?
3: हेलो ब्रदर।
2: क्या बात है, हेलो ब्रदर में सलमान को किससे प्यार होता है?
3: अरे रानी मुखर्जी।
2: वेरी गुड, रानी मुखर्जी किस फिल्म में चोर बन के चूना लगाती हैं?
3: बंटी और बबली
2: में कचरारे काले काले नैना किसके हैं?
3: ऐश्वर्या राय
2: किस फिल्म में पारो बनी है?
3: देवदास
2: की चंद्रमुखी कौन है?
3: माधुरी दीक्षित
2: का घाघरा टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज किस फिल्म में बना है?
3: जवानी दीवानी।
2: क्या बात है, और दीवाने आप भी फिल्म के लग रहे हैं, तभी आप फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है आपकी, बट स्टिल यू ट्राइड।
3: थैंक यू, यू टू, वेरी लवली सीइंग योर हियरिंग योर वॉइस।
2: It was a pleasure for me as well, sir. Have a great, great, great day, and thank you so much for this spontaneity.
3: Yeah, your show is lovely, and you take care too. Thank you.
2: Thank you so much. Have a safe flight. Bye bye.
3: Bye.
2: That was cute. तो इसी के साथ राजदीप को भी ये टैग तो मिलना बनता है यार.
1: मिर्ची, फिल्मची.
2: तो ये गेम सुन के अगर आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को भी थोड़ी अकबकाहट हो रही है कि भाई मैं क्यों नहीं, अरे तो आप हो सकते हैं इस शो पे गेम खेलते हुए मेरे साथ। ऑल यू नीड टू डू इज डीएम मी योर नंबर। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Na hitva la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
2: नहीं, कौन बात कर रहा है?
3: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
2: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
3: ओ मेरी बात
2: कौन
3: सुन।
2: बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो देख, जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो रॉन्ग नंबर?
2: फिर वही बात को लेकर आ गया?
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरे रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। मैं कोई पागल वाली बात नहीं कर रही, और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा
2: राइट नंबर ले
3: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे
3: यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
2: चल जा, चल काम कर, चल।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
5: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

0: इसी को बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: देखिए बाबू मोशाय, अगर आपके पास एंटरटेनमेंट के नाम पे सिर्फ 20 मिनट हैं आपकी जिंदगी के, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एंटरटेनमेंट का जिम्मा मेरे ऊपर है। और मैं आज पांच को पंच की लिस्ट के थ्रू कुछ ऐसी पांच साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मों की बात कर रही हूँ जो 20 मिनट के अंदर ही आपको मस्त एंटरटेनमेंट दे देंगी। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी कृति, जो 18 मिनट 51 सेकंड्स की मूवी है। अब नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट 10th रेस, जो 14 मिनट 48 सेकंड्स की मूवी है। रिलीज हुई थी 2011 में, डायरेक्टेड बाय गौरव मिश्रा, जिसमें राहुल बग्गा, नीरज शर्मा, उल्हास तैयद और पंकज त्रिपाठी लीड रोल्स में हैं। कहानी है चार मर्दों की जो साथ मिलके एक क्राइम कमिट करने वाले हैं। प्लान फ्लॉलेस है इनका, लेकिन जब सब कुछ एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो फिर क्या होता है, यही देखने में तो मजा आएगा। आई रिपीट, द नेम ऑफ द फिल्म इज 10th रेस। मूविंग ऑन, नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म राह, जो रिलीज हुई थी इंडिया 2015। ड्यूरेशन इस मूवी का है 14 मिनट 26 सेकंड और इसको डायरेक्ट किया था प्रतीक पयोधी ने। फिल्म के एक्टर्स हैं स्वर्णिम तेलांग एंड ऋषि वर्मा। बाकी अगर आपको गुड ओपन एंडिंग फिल्में पसंद हैं जो आपको कई दिनों तक हॉन्ट करें, तो दिस इज अ फिल्म टू गो फॉर, क्योंकि यहाँ दो स्ट्रेंजर्स एक कार राइड में हैं और दोनों अपने अपने डार्क सीक्रेट्स छुपा के बैठे हुए हैं। माइंड यू, वन ऑफ देम इज अ मर्डरर, जिसके बारे में आपको अंत अंत तक पता नहीं चलेगा। सो या, मेरी इस लिस्ट में और भी ऐसी ही दो फिल्मों की बातें बाकी हैं बाबू मोशाय, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। टिल द न्यू स्टेडियम टू मिर्ची, श्रुति आपके साथ है।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: छोटी छोटी चीजें भी बड़ा मजा दे जाती हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: एक्सक्यूज मी डर्टी माइंड, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू, मैं शॉर्ट फिल्म्स की बात कर रही हूँ, स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मों की, जो 20 मिनट के अंदर ही आपको अलग लेवल का मजा दे जाएंगे। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी कृति, नंबर 2 पे हमने बात किया 10th रेस के बारे में, नंबर 3 पे वी टॉक्ड अबाउट राह, अब बारी है नंबर 4 पे टू टॉक अबाउट रश्क। ये मूवी रिलीज हुई थी इन द ईयर 2020, डायरेक्टेड बाय राजीव वालिया, जिसमें भुवन अरोड़ा, पूजा भामरा, पलक पुरस्वानी एंड श्रीश शर्मा लीड रोल्स में हैं। बाकी इस फिल्म को देखने के पहले प्रिपेयर फॉर अ सीरियस माइंड गेम, हाँ, क्योंकि ये फिल्म रिवॉल्व करती है अराउंड अ बिजनेसमैन जिसके ऊपर अपनी वाइफ को मारने का इल्जाम लगा है। वेल, एज ही नरेट्स हिज वर्जन ऑफ इवेंट्स, जो सच्चाई है उसमें काफी सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आते हैं। वेल, लिस्ट में आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे, लेट्स टॉक अबाउट द मूवी इलायची, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2015, डायरेक्टेड बाय देवशीष मखीजा, जिसमें विभा छिब्बर, निमृत कौर और दिव्येंदु शर्मा हैं। वेल, इमेजिन करो बीइंग स्टक विद समवन फॉरएवर एंड एवर। सो बेसिकली ये मूवी एक डार्कली कॉमिक येट चिलिंग टेल है ऑफ अ हस्बैंड जो अपनी वाइफ को अकेला छोड़ने से मना कर देता है, इवन आफ्टर डेथ, माइंड यू। बाकी फिल्म में निमृत कौर की फ्रस्ट्रेशन इज ऑल टू रियल एंड द एंडिंग, भाई साहब, अनफॉरगेटेबल एंड हॉन्टिंग। नहीं देखी फिल्म तो अपनी वॉच लिस्ट में इसको जरूर डालना। बाकी मेरे इस लिस्ट में और भी कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलिंग शॉर्ट फिल्म ऐड करना चाहो, देन प्लीज डू दैट, MIRCHISHRUTI, यानी मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। हैवान को मिला है उसका रिलीज डेट। वेल, ये है अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं प्रिया दर्शन, एंड इट इज गोइंग टू बी एन एज ऑफ द सीट सस्पेंस ड्रामा जिसमें अक्षय कुमार, सैफ अली खान, सयामी खेर एंड श्रेया पलकाउनकर लीड रोल्स निभाते नजर आने वाली हैं। बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। बट अभी के लिए तो 11th ऑफ सितंबर के लिए मार्क योर कैलेंडर्स। आवारापन 2 का टीजर, भाई साहब अगर नहीं देखा देन यू आर डेफिनेटली मिसिंग आउट ऑन समथिंग रियली अमेजिंग। बेसिकली इस मूवी के मेकर्स ने फर्स्ट ग्लिम्प्स आउट किया है जिसके साथ ही द नॉस्टैल्जिया हिट्स रियली रियली हार्ड। मूवी में इमरान हाशमी, विजयंत कोहली, शबाना आजमी एंड दिशा पाटनी लीड रोल्स में नजर आएंगे जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं नितिन कक्कड़, जिसके एल्बम पे काम है द अल्टीमेट कॉम्बो ऑफ मिथुन एंड सईद कादरी का। इनफैक्ट इन दोनों ने ओरिजिनल एल्बम के दो गानों को रीइमेजिन किया है। पहला गाना इज तो फिर आओ एंड द सेकंड वन इज तेरा मेरा रिश्ता पुराना। वेल, द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 14th ऑफ ऑगस्ट, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन एज वेल। हेरा फेरी 3 इज डेफिनेटली हैपनिंग, और ये बात मैं नहीं बट प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा, जिसके साथ ही दी अल्टीमेट ट्रायो ऑफ अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी एंड परेश रावल एज राजू श्याम एंड बाबूराव रिस्पेक्टिवली आर गोना कम टुगेदर। डेफिनेटली एक्साइटमेंट का लेवल सुपर से भी ऊपर है। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

मंडे का तो अपना स्टारडम होता है और फ्राइडे की अपनी अलग फैन फॉलोइंग। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्दी। लेकिन हमारा जो मंगलवार है वो बॉलीवुड फिल्म के उस सीन की तरह होता है जहाँ कहानी क्वाइटली आगे बढ़ रही होती है। हीरो भी आ चुका होता है, हीरोइन से मुलाकात हो चुकी होती है, विलन का भी हिंट मिल ही गया होता है और ऑडियंस बस ये देखना चाहती है कि अब आगे क्या होगा। बिल्कुल हमारे वीक की तरह मंडे की एंट्री तो हो गई, अब पिक्चर अपनी रिदम पकड़ चुकी है और वैसे भी ये जो हफ्ता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो एक्साइटमेंट का बैकग्राउंड म्यूजिक ऑलरेडी बज रहा है। तो चलिए इस ट्यूजडे की स्टोरी को थोड़ा फिल्मी बनाते हैं, मूड हल्का रखते हैं, ट्रैफिक को थोड़ा बैकग्राउंड आर्टिस्ट बना देते हैं और बॉलीवुड का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और मुझे बताइए दोस्तों, अगर आपके इस हफ्ते का जॉनर चूज करना हो तो वो बॉलीवुड का कौन सा जॉनर होगा? रोमांस, कॉमेडी, थ्रिलर या फुल ऑन फैमिली ड्रामा? टेल मी ऑन इंस्टेट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए इस ट्यूसडे यानी मंगलवार की फिल्म का अगला सीन शुरू करते हैं इस जबरदस्त बॉलीवुड गाने के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virpa la burka.
1: Mirchi, burka. Hello.
2: Hello.
1: Anji.
2: Vivek ji.
1: Anji, bataiye.
2: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं। विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़ ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
1: ठीक ही कह रहे हो।
2: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
1: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने हैं। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
2: अच्छा,
1: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता। हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
2: बिल्कुल
1: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखूंगा,
2: थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
1: हाँ हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
2: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
1: अरे कुछ नहीं यार।
2: नहीं, फिर भी क्या, मतलब काफी चीखों की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
1: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी थी बस, हमारी मिसेज की।
2: अच्छा अच्छा,
1: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
2: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
1: हाँ,
2: अभी
1: इन्होंने चिल्लाई तो फिर
2: थोड़ा
1: बहुत।
2: आप कह रहे हो चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
1: मजे आ रहे हैं,
2: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
1: अरे तेरे को मजा आ रहा है, तू मजे ले रहा फोन करके?
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सूरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी। एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स, स्पाइसी क्रंची और देसी फन, या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धि के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट, हिट, हिट, हिट, हिट, हिट,

इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है। जी हाँ, लोग ट्रेलर से ज़्यादा ना उस आइडिया की बात कर रहे हैं जो ये फिल्म लेकर आ रही है, क्योंकि बॉलीवुड का स्पाई यूनिवर्स हमेशा बड़े बड़े हीरोज़ के नाम से जाना गया, लेकिन अब उसी यूनिवर्स के सेंटर स्टेज में आलिया भट्ट और शर्वरी है। तो बस इसी बात ने कॉन्वर्जेशन स्पार्क कर दी है, क्योंकि ट्रेलर में एक्शन है, मिस्ट्री है, लॉर्ड बॉबी देओल का पावरफुल प्रेजेंस है, वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स के सरप्राइज कनेक्शंस भी है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि सोशल मीडिया पर हर किसी का ना टेक अवे कम्प्लीटली अलग है यार। किसी को आलिया का एक्शन अवतार सबसे ज़्यादा स्ट्रांग लगा, किसी को शर्वरी का स्क्रीन प्रेजेंस, किसी की नज़र बॉबी देओल के लुक पर अटकी, तो कुछ लोगों ने ट्रेलर के लास्ट फ्यू सेकंड्स को फ्रेम बाय फ्रेम डिकोड किया है वो खास सरप्राइज के लिए। तो बताइए दोस्तों, जब आपने ये ट्रेलर देखा है तो आपने इसको किस तरह से व्यू किया? क्या बस इंजॉय करके निकल गए, या वो ट्रेलर खत्म होने के बाद आपने भी अपनी थियोरीज बनाई? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। तो चलिए अल्फा के इस पावरफुल ट्रेलर के बाद सुनते हैं आलिया भट्ट का ये अगला गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Radio Mitchie, New York. It's hot.

ये जून इतने जल्दी कैसे खत्म हो गया? शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जून शुरू होते ही ना हम सब ने सोचा था कि इस बार समर को पूरी तरह एंजॉय करेंगे, लेकिन फिर पता ही नहीं चला कि यार जून का लास्ट वीक कब आ गया और लास्ट डे कब आ गया। कि कुछ प्लान्स कंप्लीट हुए, कुछ अभी भी व्हाट्सएप चैट्स में पेंडिंग पड़े हैं और कुछ बस अगले वीकेंड के भरोसे चल रहे हैं। और शायद ना हर मंथ हमें एक छोटी सी लर्निंग देकर ही जाता है, और जून ने भी यही सिखाया है कि टाइम कैलेंडर से नहीं मोमेंट से याद रहता है। और इसीलिए जुलाई शुरू होने से पहले एक छोटा सा प्रॉमिस करते हैं कि यार एक ऐसा प्लान ज़रूर कंप्लीट करेंगे जो हम कब से पोस्टपोन कर रहे हैं। तो आप भी बताइए दोस्तों कि जून का आपका सबसे यादगार मोमेंट क्या था, टेल मी ऑन इंस्टेड आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। क्योंकि यार मेरे तो जून का हर मोमेंट वही होता है जिसमें मैं आपके लिए एक धमाकेदार गाना बजाती हूँ और वही मेरे लिए सबसे यादगार मोमेंट होता है। तो चलिए उस पल को जीते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

हर सीजन की अपनी एक पर्सनालिटी होती है और समर की पर्सनालिटी मुझे सबसे ज्यादा फिल्मी लगती है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और दिन लंबे होते हैं, शामें धीरे धीरे उतरती है और लगता ही नहीं कि घर जाने की कोई जल्दी है। पार्क्स में बच्चे खेल रहे होते हैं, कोई आइसक्रीम लेकर वॉक कर रहा होता है, कोई यार लॉन चेयर निकाल कर बस हवा इंजॉय कर रहा होता है। और मुझे ना समर की सबसे प्यारी बात ही यही लगती है कि ये सीजन हमें घर से बाहर निकलने का बहाना दे ही देता है। कोई ग्रैंड प्लान की जरूरत नहीं होती, कभी कभी बस एक छोटी सी इवनिंग ड्राइव भी पूरे दिन का मूड चेंज कर देता है। तो आज अगर घर जाते वक्त थोड़ा लंबा रूट मिल जाए तो शायद शॉर्टकट लेने की जरूरत ही नहीं। और बताइए दोस्तों, समर की कौन सी एक ऐसी चीज है जिसके बिना वो कंप्लीट ही नहीं लगता? आइसक्रीम, बारबेक्यू, लॉन्ग ड्राइव या सनसेट वॉक्स? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार मेरा तो कोई भी सीजन एक प्यारे से गाने के बगैर कंप्लीट ही नहीं लगता। तो चलिए बजाते हैं वही गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La vidba la burka.
1: Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई तो इतने धीरे के बोल रहा है.
3: भाई मानो को मेरे बॉस सो रहे हैं. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता है पावड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके हैं, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारी फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी. फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है. मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था. कहते इधर देश का पासपोर्ट का अभी आग लगा था इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो. आप क्या फायदा है आप बताओ. कब किया था?
2: अभी पहले किया था.
3: अच्छा अच्छा. आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन की थी.
3: भैया इस तो बोल. अभी करवट ली है तेरी आवाज से और हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कह दिया कोई बात नहीं कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
2: जाना जरूरी है.
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई.
3: अच्छा तो दुबई जाना है.
2: भाई जल्दी जाना है. तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
3: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा. बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए. हो सकता है कल ही मिल जाए.
2: ठीक है ठीक है.
3: मैंने सही किया ना बता दिया? वरना ये तो बौखला जाता ना. ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ाते था.
2: आपने कब सही कह रहे
3: हैं? हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए.
2: नहीं बोलना नहीं बोलना.
3: भाई साहब एक बात बताऊँ?
2: बताओ.
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था. कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत. ठीक है मैं रखता हूँ.
2: करवा देना भी है
3: आपसे. मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे.
2: सॉरी सॉरी सॉरी.
3: ठीक है चलो. पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट.
2: ओके ओके.
3: आई लव यू.
2: आई लव यू टू.
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब भी बात फिट होने की होती है या जिम जाने की होती है तो हम सिर्फ बाइसेप्स बढ़ाने के लिए नहीं जाते, हमें चाहिए होती है कोर स्ट्रेंथ। और वैसे ही लाइफ में ना सिर्फ सैलरी ही काफ़ी नहीं है, हमें चाहिए होती है फाइनेंशियल फिटनेस। और जब फाइनेंशियल फिटनेस स्ट्रांग होती है ना, तभी होम बाइंग सिर्फ एक सपना नहीं रहता, एक प्लान्ड स्मार्ट मूव बन जाता है। और इसी स्मार्ट प्लानिंग के बारे में आज और भी जानकारी हमें देंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लाइन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब
3: मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपर पावर पता है क्या है? ये हमें हर इमोशन के लिए गाना दे ही देता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और बारिश हो तो अलग प्लेलिस्ट, लॉन्ग ड्राइव हो तो अलग, हार्ट ब्रेक के लिए अलग और सेलिब्रेशन के लिए अलग। और मज़े की बात तो ये है कि कभी कभी हम फीलिंग्स बाद में समझते हैं और बॉलीवुड पहले ही उसके लिए गाना बना चुका होता है। और इसीलिए कुछ सॉन्ग्स ना सिर्फ हिट नहीं होते, वो हमारी लाइफ के माइलस्टोन्स बन जाते हैं। चाहे फिर स्कूल फेयरवेल हो, पहली सैलरी हो, पहला प्यार हो, या फिर फैमिली रोड ट्रिप, हर मेमोरी के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक बॉलीवुड सॉन्ग जरूर बज रहा होता है। तो दोस्तों, आज का सवाल बहुत ही आसान है। अगर आपकी लाइफ पर फिल्म बने तो उसका टाइटल ट्रैक कौन सा बॉलीवुड गाना होगा? DMB ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए देखते हैं कि आज का अगला गाना किसकी कहानी का बैकग्राउंड म्यूजिक बनने वाला है। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। और आज का हंगामा आ रहा है फिल्म अग्निपथ के चिकनी चमेली गाने से। यार वैसे तो इस गाने में स्क्रीन पे कटरीना कैफ का रॉ रस्टिक और हाई एनर्जी डांस तो है ही, लेकिन पर्दे के पीछे गणेश आचार्य जी जो कि इस गाने के कोरियोग्राफर है, उन्होंने बताया था कि कटरीना ने इस गाने के लिए लगातार 8 दिन रिहर्सल किए थे और कभी कभी 8 to 9 hours एट स्ट्रेच। तो सोचिए दोस्तों, ये कोई स्मूथ बॉलरूम नंबर नहीं था। फास्ट बीट्स, इंटेंस एक्सप्रेशन, देसी फुटवर्क और फुल स्टैमिना का टेस्ट था। और स्क्रीन पे कैटरीना एकदम फायर तो लग रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे बॉडी को लिटरली कमांड देना पड़ रहा था कि बस थोड़ा और, एक टेक और। और जी हाँ, ऋतिक रोशन, संजय दत्त, करण जौहर, सभी लोग उनकी परफॉर्मेंस देख के काफ़ी इंप्रेस हुए थे। और ना ही सिर्फ वो, पूरी ऑडियंस काफ़ी इंप्रेस हुई थी, क्योंकि कभी कभी ना बॉलीवुड में एक हिट हुक स्टेप के पीछे पूरा बूट कैंप छुपा होता है, और यही गाना वो साबित करता है। वैसे ये वो गाना था जिसमें यार कैटरीना और ऋतिक थे, और पहली बार ऐसा था कि ऋतिक नहीं नाच रहे थे और कैटरीना नाच रही थी, और हम सब कैटरीना को देख रहे थे। तो जी हाँ, ये थी पर्दे के पीछे की वो मज़ेदार दास्ता फॉर द सॉन्ग चिकनी चमेली। और वही सुनते हैं अभी, लेकिन आप भी मुझे बताना कि ऐसा कौन सा हिट गाना है जिसके पर्दे के पीछे की बातें आपको भी जाननी है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्दी SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शारदा लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। एल्बम था प्रीतम ने बनाया हुआ लव आजकल का, तो ये तो आपको याद होगा ही। लेकिन इसका जो ये खास गाना है जो सीधा साधा नहीं था, बिल्कुल था ट्विस्ट, पूरा मूड पार्टी मोड में स्विच कराने वाला एक गाना, जो यार लिखा तो वैसे इरशाद कामिल ने था, सिंगर थे नीरज श्रीधर और म्यूजिक था प्रीतम का। और जब भी शाम को थोड़ा ग्रूव चाहिए था ना तो हम ट्विस्ट सुनते थे, क्योंकि यार नीरज श्रीधर की एनर्जेटिक आवाज ही ऐसी थी कि यार अगर तुम बस बैठे हो ना तो भी थिरकने लग जाते थे। और प्रीतम का फंकी कंपोजिशन, इन दोनों का बहुत ही परफेक्ट मेल था, और ये जो गाना था हर पार्टी में अपने आप को पोजीशन कर ही लेता था। वैसे मजे की बात तो ये है कि इस सॉन्ग की कोरियोग्राफी में सैफ अली खान ने अपने नेचुरल डांसिंग स्टाइल को फुल ऑन एक्सप्लोर किया था, जहाँ उन्होंने स्पॉन्टेनियस डांस मूव्स किए थे। मतलब वो ज़्यादा कोरियोग्राफी हुई ही नहीं थी उस मूवी में, जो फिल्म में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था। वैसे प्रीतम और इरशाद कामिल का कोलैबोरेशन फुल ऑन फन वाइब, ये गाना एक इंस्टेंट क्राउड पुलर बन ही गया था, और आज भी उतना ही हमें थिरकाता है, उतना ही हमें डांस करने पे मजबूर करता है। तो आप भी बताना कि आपका ट्विस्ट मोमेंट कब था। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और क्या आज भी ये गाना सुन के आप भी अपने आप में डांस करते हो। वैसे इस एल्बम के और भी गाने के बारे में बात होने वाली है, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. La vidva la burga. Mirci, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
2: नहीं, कौन बात कर रहा है?
3: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है।
2: अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
3: ओ मेरी बात
2: कौन
3: सुन,
2: बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
2: फिर वही बात को लेकर आ गया?
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर। और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू में
2: वाली बातें कर रहा
3: है? मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहा। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
2: रॉन्ग ले रहा हूँ
3: राइट नंबर ले ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे रॉन्ग नंबर, अरे यार
3: बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू,
2: चल काम कर, चल।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

कुछ करियर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ जॉब नहीं होते, लाइफस्टाइल फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और सोचिए, मॉर्निंग कम्यूट की जगह एक काम, कप ऑफ चाय, और एक ऐसा काम वो भी ऐसे फील्ड में जहाँ ग्रोथ भी हो और फ्लेक्सिबिलिटी भी। और आजकल लोग करियर चूज करते वक्त ना सिर्फ सैलरी ही नहीं देखते, वर्क लाइफ बैलेंस भी देख रहे हैं। और कई सारे इंडस्ट्रीज में ऐसे करियर ऑप्शंस पॉसिबल है, स्पेशली हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। तो आज ही कंसिडर कीजिए अ करियर एज अ मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग स्पेशलिस्ट विथ एम्स एजुकेशन, बिकॉज विथ जस्ट कपल ऑफ मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग यू कैन गेट स्टार्टेड इन दिस एवर ग्रोइंग फील्ड। प्रोग्राम फुल्ली ऑनलाइन अवेलेबल है और अभी वो लोग आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स भी एक्सेप्ट करते हैं। फॉर मोर गाइडेंस कॉल 9082220002, 9082220002, या फिर विजिट कीजिए aimseducation.edu फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग करियर ऑफ मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग स्पेशलिस्ट, जहां घर का सुकून भी है और काम करने का मजा भी। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के उस सुपर डुपर हिट एल्बम की जिसका यार हर एक गाना धमाकेदार था, कंपोज्ड बाय प्रीतम। 2009 का लव आजकल का एल्बम, और वैसे तो यार इसके सारे ही गाने अमेजिंग थे, लेकिन एक गाना ऐसा है जिसे सुन के ना शांत रहना इम्पॉसिबल हो जाता है, आर फेवरेट आहू आहू। क्योंकि सच बताओ तो आहू आहू वो गाना है जो सुनते ही बॉडी पहले रिएक्ट करती है और दिमाग बाद में बोलता है, फिर चाहे इवनिंग ड्राइव टाइम हो या किचन में चाय बन रही हो, इस बीट पे शोल्डर्स खुद हिलने लगते हैं। क्योंकि नीरज श्रीधर की जो प्लेफुल वोकल्स है, मास्टर सलीम का पंजाबी फायर और सुजैन डी मेलो का एटीट्यूड और ऊपर से प्रीतम के ढोल मीट्स क्लब का ग्रूव, ये गाना मतलब फुल ऑन कंट्रोल्ड मैडनेस है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये जो सॉन्ग का फोक क्लब फ्यूजन है ना, उस वक्त ही इतना ज़्यादा फ्रेश लगता था, और ना सिर्फ उस वक्त अभी भी उतना ही ग्रूविंग है, और उसके ऊपर मास्टर सलीम का जो रस्टिक पंच है उसने इस ट्रैक को वो देसी स्वैगर दिया था जो हमें सीधा डांस फ्लोर पे लेके जाता है। वैसे ऑनेस्टली ये जो गाना है वो उन रेयर गानों में से है जो थोड़ा सा फ्लर्ट करता है, थोड़ा सा टीज करता है और बहुत ज़्यादा ग्रूव कराता है। तो चलिए आपको मैं चैलेंज देती हूँ कि आहू आहू सुन के ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टिल बैठे हो। टेल मी ऑन इंस्टा कि ये गाना सुन के क्या आपने थोड़ा हेड बॉप किया या फिर फिंगर टॉप किया या फिर स्टरिंग पे बीट मारी, और अगर मारी तो यू आर कॉट दोस्तों। मुझे जरूर बताना कि ये सब हुआ कि नहीं। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और तब तक के लिए आपके लिए लव आजकल का आऊं आऊं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका हर एक गाना ना सिर्फ सुपर डुपर हिट था बल्कि दिल को छू लेने वाला था। जी हाँ, वैसे तो इस एल्बम के बारे में हमने बहुत सारी बातें की है, इसके गानों के बहुत सारी बातें की है। कंपोज बाई प्रीतम, लव आजकल का एल्बम, जिसमें यार चोर बाजारी जैसा ब्रेकअप वाला गाना भी था जिसने ब्रेकअप के बाद मुस्कुराना सिखा दिया था, और एक ऐसा गाना था जिसने बस दूरियों को महसूस कराना सिखाया था। जी हाँ, ये दूरियां बाय मोहित चौहान, क्योंकि कुछ गाने सुनते ही ना दिल में उतर जाते हैं और दूरियां उन्हीं में से एक गाना था। जब चोर बाजारी हमने सुना था तब लगा था कि इम्तियाज अली और प्रीतम ने इस एल्बम को काफी ब्रॉड रेंज बनाया था कि एक हार्ट ब्रेक के गाने को भी इतने हल्के से शरारती रंग में दिखाया था, लेकिन फिर पता चला क्योंकि बाद में दूरियां आने वाला था, क्योंकि दूरियां वो एक ऐसी कहानी बताता था जब साइलेंस भी बोलने लगता है, क्योंकि मोहित चौहान की आवाज़ ही ऐसी थी, जो रॉनस उनकी आवाज़ में थी ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो गाना गा रहे हैं, बस ऐसा लग रहा था कि दिल से कुछ बोल रहे हैं। और प्रीतम का कंपोजिशन भी देखिए, मतलब ना कोई बीट्स, बस गिटार और हवा और थोड़ी सी साइलेंस, जैसे गाने में भी ना फासला हो। और यही तो कमाल की बात है इस गाने की, ये गाना सिर्फ दूरियों की बातें नहीं करता, दूरियां महसूस कराता है। किसी का साथ छूटना, लॉन्ग डिस्टेंस या बस एक इमोशनल गैप, हर कोई जो इस गाने को सुनता है ना अपनी कहानी में उसे रख देता है। और मज़े की बात तो ये है कि मोहित चौहान के फ्री फ्लोइंग फ्रेजिंग और ऑलमोस्ट एक कन्वर्सेशनल टाइप सिंगिंग ने इस ट्रैक को बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट बना दिया, और शायद इसीलिए ये हार्ट ब्रेक एंथम कम पर्सनल कन्फेशन ज़्यादा लगता है। वैसे आप भी मुझे बताइए, क्या आपको ये गाना उतना ही डीप लगता है जितना मुझे लगता है? टेल मी ऑनेस्ट एट आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगर इस गाने ने दूरियां फील कराई है तो किसको याद करके आज ये गाना सुन रहे हो वो भी बताना। तब तक के लिए सुनते हैं दूरियां फ्रॉम द अमेजिंग एल्बम लव आजकल, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका हर एक गाना ना सिर्फ सुपर डुपर हिट था बल्कि दिल को छू लेने वाला था। जी हाँ, वैसे तो इस एल्बम के बारे में हमने बहुत सारी बातें की है, इसके गानों के बहुत सारी बातें की है। कंपोज बाय प्रीतम, लव आजकल का एल्बम, जिसमें यार चोर बाजारी जैसा ब्रेकअप वाला गाना भी था जिसने ब्रेकअप के बाद मुस्कुराना सिखा दिया था, और एक ऐसा गाना था जिसने बस दूरियों को महसूस कराना सिखाया था। जी हाँ, ये दूरियां बाय मोहित चौहान, क्योंकि कुछ गाने सुनते ही ना दिल में उतर जाते हैं और दूरियां उन्हीं में से एक गाना था। जब चोर बाजारी हमने सुना था तब लगा था कि इम्तियाज अली और प्रीतम ने इस एल्बम को काफी ब्रॉड रेंज बनाया था कि एक हार्ट ब्रेक के गाने को भी इतने हल्के से शरारती रंग में दिखाया था, लेकिन फिर पता चला क्योंकि बाद में दूरियां आने वाला था, क्योंकि दूरियां वो एक ऐसी कहानी बताता था जब साइलेंस भी बोलने लगता है, क्योंकि मोहित चौहान की आवाज़ ही ऐसी थी, जो रॉनस उनकी आवाज़ में थी ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो गाना गा रहे हैं, बस ऐसा लग रहा था कि दिल से कुछ बोल रहे हैं। और प्रीतम का कंपोजिशन भी देखिए, मतलब ना कोई बीट्स, बस गिटार और हवा और थोड़ी सी साइलेंस, जैसे गाने में भी ना फासला हो। और यही तो कमाल की बात है इस गाने की, ये गाना सिर्फ दूरियों की बातें नहीं करता, दूरियां महसूस कराता है। किसी का साथ छूटना, लॉन्ग डिस्टेंस या बस एक इमोशनल गैप, हर कोई जो इस गाने को सुनता है ना अपनी कहानी में उसे रख देता है। और मज़े की बात तो ये है कि मोहित चौहान के फ्री फ्लोइंग फ्रेजिंग और ऑलमोस्ट एक कन्वर्जेशनल टाइप सिंगिंग ने इस ट्रैक को बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट बना दिया, और शायद इसीलिए ये हार्ट ब्रेक एंथम कम पर्सनल कन्फेशन ज़्यादा लगता है। वैसे आप भी मुझे बताइए, क्या आपको ये गाना उतना ही डीप लगता है जितना मुझे लगता है? टेल मी ऑनेस्ट एट आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगर इस गाने ने दूरियां फील कराई है तो किसको याद करके आज ये गाना सुन रहे हो वो भी बताना। तब तक के लिए सुनते हैं दूरियां फ्रॉम द अमेजिंग एल्बम लव आजकल, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
0: हेलो
3: कौन?
0: हेलो विपिन,
3: कौन बोल रहा है?
0: इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
3: हाँ पासपोर्ट अप्लाई किया था।
0: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
3: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
0: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से। पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं, 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है। मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
3: अभी पहले किया था।
0: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
3: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी।
0: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
3: जाना जरूरी है।
0: कहाँ जा रहे हो?
3: दुबई।
0: अच्छा तो दुबई जाना है?
3: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
0: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
3: हाँ ठीक है ठीक है,
0: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
3: आपने सही कह रहा
0: है। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
3: बताओ।
0: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी ही बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
3: मैं तो पागल है क्या?
0: चिल्लाओ मत, ठीक है मैं रखता हूँ।
3: करवा देना भी है
0: आपसे। मरवाओ के क्या उठ जाएंगे।
3: सॉरी सॉरी सॉरी।
0: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
3: ओके ओके,
0: आई लव यू।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: दिन भर की भागदौड़ में रह गई हो बॉलीवुड की न्यूज पेंडिंग, तो मैं हूं ना आपको बताने व्हाट्स ट्रेंडिंग। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी तो लगता है कि बॉलीवुड भी ना न्यू जर्सी टर्न पाइक हो चुका है, क्योंकि सबको एक ही वक्त पे निकलना होता है। जी हाँ, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक जून 2026 बॉलीवुड का सबसे क्राउडेड मंथ्स में से एक माना गया है, जहां मल्टीपल मेजर रिलीजेस एक ही महीने में स्क्रीन्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि यार इतनी बड़ी रिलीजेज एक साथ आने वाली है कि स्क्रीन शेयरिंग और ऑडियंस अटेंशन दोनों के लिए कंपटीशन बढ़ते ही जाने वाली है। और अगर लिस्ट भी देखें ना तो मजा आ जाता है। मतलब मूवीज लाइक मैं वापस आऊंगा, कॉकटेल 2 और कहीं और बड़े बड़े टाइटल्स लाइन में खड़े हैं। और मुझे लगता है कि यार इसमें ना ऑडियंस का ही फायदा है। अब आप बोलोगे कैसे, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। मतलब एक जमाना था हम कहते थे कि यार कोई अच्छी मूवी ही नहीं बन रही है, तो अब प्रॉब्लम उल्टी हो चुकी है, क्योंकि अब प्रॉब्लम नहीं आ चुकी है कि हम ये कहने वाले हैं कि पहली कौन सी मूवी देखे। तो आप भी जरूर बताना कि यार जून में आप अगर एक ही मूवी देख पाओ बॉलीवुड की थिएटर में जाकर, तो वो कौन सी मूवी होगी। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। करते हैं यार थोड़े बहुत वॉच लिस्ट कंपेयर, और तब तक के लिए आपके लिए ये मजेदार सा नए रिलीज वाली मूवी का गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी,

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट, हिट, हिट, हिट, हिट गाना, हिट गाना।

दोस्तों, हम सब ने टाइटन की घड़ी देखी है, लेकिन कभी सोचा है कि एक इंडियन वॉच ब्रांड दुनिया के मैप पर कैसे पहुंची? शाम शानदार लाइक सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जून ओटीटी पर एक सीरीज बहुत ही क्वाइटली बस क्रिएट कर रही है। जी हाँ, मेड इन इंडिया अ टाइटन स्टोरी। सीरीज में नसीरुद्दीन शाह रिपोर्टली JRD टाटा का रोल निभा रहे हैं और जिम शार माई फेवरेट जर्सिक देसाई का रोल में नजर आ रहे हैं। कहानी बस एक कंपनी की नहीं है, बल्कि उस विजन की है जिसने इंडियन कंज्यूमर ब्रांड को ग्लोबल कॉन्फिडेंस दिया है। और मुझे तो लगता है कि ये स्पेशली ना हम जैसे NRI ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करेगी, क्योंकि जब भी हम कहीं भी मेड इन इंडिया को प्राउडली देखते हैं ना, उसके पीछे का सपना और उसके पीछे की रिस्क जब जानने मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे ये सीरीज़ बिजनेस स्टोरी कम और एम्बिशन स्टोरी ज़्यादा लगती है, तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपने भी ये सीरीज़ देखी है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHR। अगर देखिए तो आपको कैसी लगी। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और देखते ही देखते ये शाम भी ढलने आ चुकी है और हमारे भी जाने का वक्त आ चुका है। लेकिन दोस्तों, आपके साथ शाम शानदार में अलग अलग धमाकेदार गाने बजाने का जो मज़ा है, उसे मैं मिस नहीं करने वाली। इसलिए कल फिर से आपसे मिलने आऊँगी फ्रॉम 4 to 8 PM EST। और आज के लिए आप कहीं ना जाइए, क्योंकि यार प्यार के जो अनोखे फंडे हैं वो आपको समझाने आ रही है रोशी। तो कहीं ना जाइए, जमे रहिए, बने रहिए राइट हियर ऑन मिर्ची। और आपके जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है वो मुझे सेंड करते रहिए ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल @RJMirchiSiddhi SIDDHI ओनली ऑन इंस्टा। और आपके लिए ये अगला तड़कता फड़कता गाना जाते जाते राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।